FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, सुबह के 6 बजने को हैं, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज, इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र

गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन।

दुर्बल मन, खालीपन में नकारात्मक चिंतन, आभासी भय, शंका, कुशंका, संशय, संदेह से भर जाता है और फिर इसके अनुरूप मानसिक वृत्तियां बनने लगती हैं। दीर्घकाल तक चलने वाला ये मानसिक व्यापार कई मानसिक रोगों को जन्म देता है। इससे बचने और इनसे बाहर निकलने के लिए सकारात्मक सोच, रचनात्मक चिंतन और सदाचार की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच से हम सदा स्वयं के प्रति सावधान एवं जागरूक बने रह सकते हैं। इसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मन का स्नान है जिसमें नकारात्मक विचार गल कर मिटते रहते हैं। यदि मन को स्थायी और मजबूत बनाना है तो अकेलेपन में ही सर्वश्रेष्ठ कार्य का संपादन किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि विश्व के श्रेष्ठतम कार्य एकांत में ही संपन्न हुए हैं। जिस एकांत से लोग भागते रहे हैं उसी एकांत में महान विचारकों ने दुनिया को विस्मित करने वाले आविष्कार और अनुसंधान संपन्न किए। जीवन के प्रति गंभीर दृष्टि रखने वाले संत महात्मा जीवन को सर्वोच्च ग्रंथ मानते हैं जिसके पन्नों में रहस्य रोमांच के अद्भुत सूत्र समाहित हैं। इन सूत्रों की विवेचना, विश्लेषण, व्याख्या जनसंकुल में संभव नहीं, केवल एकांत में ही ये की जा सकती है और उसी एकांत मन में उस परमपिता का निवास होता है जो हमें सही दिशा निर्देश देते हैं। तो चलिए चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमारी सोच अक्सर हम पर हावी रहती है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर चीज में सकारात्मकता ही ढूंढता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। लेकिन नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अच्छी परिस्थिति में भी नकारात्मकता से उसे भर देता है। जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो सकती है वो भी उसकी अच्छी सोच ना होने की वजह से प्राप्त नहीं होती। कहा भी गया है, जैसा तेरा ख्याल वैसा तेरा हाल। सकारात्मक सोच केवल उसी व्यक्ति की हो सकती है जिसने ईश्वर में अपना मन रमाया हो, क्योंकि ऐसे स्थिर मन में कोई भी मोह माया नहीं आ सकती, कोई भी हिलौरा उसे हिला नहीं सकता।

निंदा, चुगली, खुशामद, ये सब कार्य छोटी सोच वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में किसी के लिए प्रेम, दया या विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं ये सब जो कर रहे हैं यही श्रेष्ठ है, उसी में आनंद मनाकर मदमस्त रहते हैं। दूसरों का अहित करके कभी अपना हित नहीं हो सकता। हो सकता है कि पल भर के लिए ऐसे लोगों को खुशी मिल जाए, लेकिन जब वे आत्मविश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात दौड़ती होगी कि हाँ, मैंने जो किया गलत किया। लेकिन ये सब तभी संभव हो पाएगा जब मन में श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का बीज अंकुरित होगा, और ऐसा केवल और केवल प्रभु कृपा से ही हो सकता है।

कभी भी उन चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों की तरफ हमें देखना चाहिए जो बिना प्रार्थना के भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं और ये सुंदर जीवन हम जी रहे हैं। मानव जीवन मिलना आसान काम नहीं, ना जाने कितनी योनियों में से गुजरकर कितने जन्म लेकर हमने ये मानव देह धारण की है। अगर इस जन्म को हम सार्थक करना चाहते हैं तो हमें जीवन में सही राह को चुनना होगा, ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करके इसे श्रेष्ठ बना सकें। और ये श्रेष्ठता और भक्ति केवल उस

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

अभी आपने श्री रामचरितमानस गान से भक्तिमय पाठ सुना। आज आपने सुना भाग 192। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 6:50 हुए हैं। आइए सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आज आप सुनेंगे गांधी चर्चा। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। लाइव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी सुबह 9:00 पेश किया जाएगा। सुबह 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद जनवाणी कार्यक्रम

0: शेष भाग 9:30 से 10 तक आप सुन पाएंगे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 10 पहाड़ों के सुर हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आज आप सुनेंगे जय हिंद गीतमाला। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5 तक, और शाम 5 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्मी फ्राइडे। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ मौजा गराई दिया, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7 के समाचारों में पहले 7 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है मस्ती। 9:30 पर आप सुनेंगे कारवां सुरों का। 10 बॉलीवुड वीर्स में नई फिल्मों के गाने आपको सुनवाए जाएंगे। रात्रि 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। श्रोता ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणः च हार्दिक्यः शुभकामनाः। अथ वार्ताः। नेपाल देशे अकस्मादागतेन भीषण जलाप्लावेन आपद्ग्रस्तानां भारतीय नागरिकाणां अन्वेषणाय तेषां रक्षणाय च भारतेन प्रयत्नाः तीव्रीकृताः। नेपाल देशे आगतेन भीषण जलाप्लावेन मृतानां संख्या 89,300 यावत् जाता। सहस्रशः लुप्तानां जनानां अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति। तेषु 90,200 भारतीयाः अपि सन्ति। तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15,000 लुप्त जनानां सूचना प्रदत्ता। तेषु 30 देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति। विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपाल देशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति। तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं 47 तन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: राष्ट्रियापद प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपाल देशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः, तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति। राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुंदेला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति, तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तर प्रदेशे च 11 दलानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य 2-दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कन्द नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अद्य 12 जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति। 2014 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इयं योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तं 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000 रूप्यकाणि अस्ति। रक्षाबन्धन पर्व भ्रातृ भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेहबन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातॄणां हस्तमणिबन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः, आरोग्यस्य, सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य, सहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति, सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल

0: सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal have reached 389 as authorities raced against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,500 people missing. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The minister said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected areas have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से सप्रेम नमस्कार। आज की इस सुहानी सी सुबह में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। कहते हैं अच्छे विचार हम सुने उन्हें जीवन में उतारें तो जीवन को गति मिलती है, तो क्यों ना सबसे पहले अच्छा सा सुविचार सुनकर हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। बिना परिश्रम के जो चीज हमें प्राप्त होती है उसकी कदर हम नहीं करते, लेकिन जो चीज हमें मेहनत से प्राप्त होती है, मेहनत से मिलती है, उसका एहसास हमें अलग ही होता है। ये कथन आंवले के स्वाद जैसा है। जब हम मेहनत करते हैं तो खट्टास का अनुभव होता है, लेकिन जब उसका फल हमें मिलता है तो आंवले के उस मीठे स्वाद की तरह हमें महसूस होता है जो हमें उसके खाने के बाद मिलता है। तो ये तो था आज का सुविचार, और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

बिल्कुल, हमारा और हमारे श्रोताओं से मिलने का और प्यार का सिलसिला बहुत पुराना है। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला, प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन के स्नेह की डोर, जो एक दूसरे को वो स्नेह की डोर में पिरोता है, और इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन केवल धागों का रिश्ता ही नहीं, बल्कि भावनाओं, जिम्मेदारी और जीवन भर साथ निभाने का प्रतीक है। तो चलिए, इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये मीठा सा गीत, भाई बहन के प्रेम से लिप्त ये गाना आपको सुनवाते हैं और उसके बाद जानकारियों का सिलसिला जारी रखेंगे।

सुबह के 7:22 और 19 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सुहानी। श्रोतो, अब हम बात करेंगे नरोली पूर्णिमा के बारे में। नरोली या नारली पूर्णिमा श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कोंकण तट और पश्चिमी भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार नरोली पूर्णिमा आज के ही दिन यानी 28 अगस्त के दिन ही मनाई जा रही है। नरोली का अर्थ होता है नारियल और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। इस दिन विशेष रूप से मछुआरे समुदाय समुद्र और जल के देवता वरुण देव की पूजा करते हैं और समुद्र को नारियल अर्पित कर सुरक्षा और समृद्ध मछली पकड़ने के मौसम की कामना करते हैं। मछुआरों के जीवन में इस दिवस का विशेष महत्व होता है क्योंकि मानसून के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य रोक दिया जाता है। पूर्णिमा के इस पर्व के बाद पारंपरिक रूप से नई मछली पकड़ने की शुरुआत मानी जाती है और इस अवसर पर नावों और मछली पकड़ने वाले जालों को सजाया जाता है। सामूहिक रूप से पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पर नारियल से बने पारंपरिक व्यंजन विशेषकर नारली भात भी तैयार किया जाता है। ये पर्व समुद्र के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के सम्मान और सुरक्षित जीवन की कामना का सुंदर संदेश देता है। मछुआरों का जीवन बहुत ही सरल होता है। अपनी छोटी छोटी खुशियां वो समुद्र के किनारे नाच गाकर मनाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा ही गाना कार्यक्रम में हम आपको भी सुनवाते हैं।

श्रोताओ, अब हम बात करेंगे उस्ताद विलायत हां की जन्म जयंती के बारे में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सितार वादक उस्ताद विलायत खान की जन्म जयंती पर उन्हें हम सादर नमन करते हैं। वे 28 अगस्त 1928 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुए। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के इटावा घराने परंपरा के प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। संगीत उन्हें विरासत में मिला और उन्होंने सितार वादन को अपनी विशिष्ट शैली से एक नई पहचान दी। उनकी वादन शैली में गायकी अंग की विशेष छाप दिखाई देती थी। वे सितार पर मानव स्वर को गाते हुए प्रस्तुत करते थे। उनकी मधुर, भावपूर्ण और प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने देश विदेश में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। 20 मार्च 2004 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी संगीत साधना और सितार की मधुर ध्वनि आज भी संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवित है। उस्ताद विलायत खां को पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस्ताद विलायत खां साहब ने फिल्मों में बहुत कम काम किया, लेकिन उन्होंने जितना भी संगीत दिया वह भारतीय सिनेमा का इतिहास जो है उसमें अमर हो गया। उनका फिल्मी सफ़र जो है मुख्य रूप से चुनिंदा कला फिल्मों और शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित रहा। महानिदेशक सत्यजीत रे की फिल्म जलसागर द म्यूजिक रूम 1958 की बांग्ला मास्टरपीस फिल्म के लिए संगीत निर्देशन उन्होंने किया। सितार वादन मील का पत्थर उस समय जो है साबित हुआ। सन 1951 में आई फिल्म मदहोश के लिए उन्होंने पृष्ठभूमि में सितार वादन का संगीत दिया। 1969 में जेम्स आइवरी द्वारा निर्देशित फिल्म में उन्होंने अपनी कला का जादू बिखेरा। 1976 में बनी फिल्म कादंबरी में भी उन्होंने सितार की गहरी छाप छोड़ी। कामा सूत्रा टेल ऑफ लव 1996 में बनी इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भी उन्होंने एक सितार वादक के रूप में अपना योगदान दिया है।

श्रोताओ, अब बात करते हैं इतिहास में 28 अगस्त के दिन की। सन 1521 में तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम के सैनिकों ने बेलग्रेड पर कब्जा किया। सन 1600 में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया। सन 1845 में प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण आज के दिन छपा। सन 1858 में उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटिश विलियम जेम्स हर्शल का जन्म आज ही के दिन हुआ। सन 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन किया गया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। सन 1984 को सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। सन 1986 में भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला बनी। सन 1990 को इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया। सन 1999 में आज ही के दिन मेजर समीर कोतवाल आसाम में उग्रवादियों के एक गुट के साथ लड़ाई में शहीद हुए। सन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के सभी नोटों के प्रचलन को हटाने का निर्णय लिया। और आज जन्म दिवस है जगदीश सिंह खेर का, जो भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सन 1929 में प्रसिद्ध आधुनिक साहित्यकार राजेंद्र यादव का 1929 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष एमजीके मेनन 1928 में आज ही के दिन पैदा हुए। भारत की पहली महिला पायलट भोपाल रियासत की राजकुमारी आवेदा सुल्तान 1913 को आज ही के दिन जन्मी।

0: के चलिए।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब सुनते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के द्विपक्षीय यात्रा पर जाएंगे और ये यात्रा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं और यात्रा के दौरान वे आर्थिक और वित्तीय सहयोग, निवेश आकर्षित करने और G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से खेलों में अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है, खेल और मैदान युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात प्रस्तावित है। दोनों नेताओं की मुलाकात SCO बैठक के दौरान होने वाली जानकारी इसके सामने आई है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारत ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए हर संभव सहायता देने की बात की है। भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को लेकर बातचीत हुई है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। धर्मशाला में नेपाल तिब्बत बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित इसमें की गई, जिसमें बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लिया। खेल समाचार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया, जो 1974 के बाद उसका विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, इसके बावजूद भारत ने 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से अपने नाम की है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के कारण कई क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है और राज्य के कई हिस्सों में सड़क यातायात प्रभावित होने की खबरें हैं।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं और आज है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आप सुनते हैं गांधी चर्चा। तो लीजिए सुनते हैं।

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 24वां अध्याय देश की ओर। अब मैं दक्षिण अफ्रीका में 3 साल रह चुका था। मैं लोगों को पहचानने लगा था और लोग मुझे पहचानने लगे थे। सन 1896 में मैंने 6 महीनों के लिए देश जाने की इजाजत मांगी। मैंने देखा कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहना होगा। कहा जा सकता है कि मेरी वकालत ठीक चल रही थी। सार्वजनिक काम में लोग मेरी उपस्थिति की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। मैं स्वयं भी करता था। इससे मैंने दक्षिण अफ्रीका में सपरिवार रहने का निश्चय किया और उसके लिए देश हो आना ठीक समझा। फिर मैंने यह भी देखा कि देश जाने से कुछ सार्वजनिक कार्य भी हो सकता है। मुझे लगा कि देश में लोकमत जागृत करके यहाँ के भारतीयों के प्रश्न में लोगों की अधिक दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। 3 पाउंड का कर एक नासूर था, सदा बहने वाला घाव था। जब तक वह रद्द ना हो, चित्त को शांति नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरे देश जाने पर कांग्रेस का और शिक्षा मंडल का काम कौन संभाले? 2 साथियों पर मेरी दृष्टि पड़ी, आदमजी मियां खान और पारसी रुस्तम जी। व्यापारी समाज में बहुत से काम करने वाले निकल आए थे, पर मंत्री का काम संभाल सकने, नियमित रूप से काम करने और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे हुए हिंदुस्तानियों का मन जीत सकने की योग्यता रखने वालों में ये 2 प्रथम पंक्ति में खड़े किए जा सकते थे। मंत्री के लिए साधारण अंग्रेजी जानने की जरूरत तो थी ही। मैंने इन 2 में से स्वर्गीय आदम जी मियां खान को मंत्री पद देने की सिफारिश कांग्रेस से की और वह स्वीकार कर ली गई। अनुभव से यह चुनाव बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। अपनी लगन, उदारता, मिठास और विवेक से सेठ आदम जी मियां खान ने सबको संतुष्ट किया और सबको विश्वास हो गया कि मंत्री का काम करने के लिए वकील, बारिस्टर की या बहुत पढ़े हुए उपाधिधारी की आवश्यकता नहीं है। सन 1896 के मध्य में मैं देश जाने के लिए पोंगोला स्टीमर में रवाना हुआ। यह स्टीमर कलकत्ते जाने वाला था। स्टीमर में मुसाफिर बहुत थे। 2 अंग्रेज अधिकारी थे। उनसे मेरी मित्रता हो गई। एक के साथ मैं रोज 1 घंटा शतरंज खेलने में बिताता था। स्टीमर के डॉक्टर ने मुझे एक तमिल शिक्षक यानी तमिल सिखाने वाली पुस्तक दी। अतएव मैंने उसका अभ्यास शुरू कर दिया। नेटाल में मैंने अनुभव किया कि मुसलमानों के साथ अधिक निकट का संबंध जोड़ने के लिए मुझे उर्दू सीखनी चाहिए और मद्रासी भाइयों से वैसा संबंध स्थापित करने के लिए तमिल सीखनी चाहिए। उर्दू के लिए उस अंग्रेज मित्र की मांग पर मैंने डेक के मुसाफिरों में से एक अच्छा मुंशी ढूंढ निकाला और हमारी पढ़ाई अच्छी तरह चलने लगी। अंग्रेज अधिकारी की स्मरण शक्ति मुझसे बढ़ी चढ़ी थी। उर्दू अक्षर पहचानने में मुझे मुश्किल होती थी, पर वह तो एक बार जिस शब्द को देख लेते उसे कभी भूलते ही न थे। मैं अधिक मेहनत करने लगा, फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर सका। तमिल का अभ्यास भी ठीक चलता रहा, उसमें किसी की मदद नहीं मिल सकती थी। पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी गई थी कि मदद की अधिक आवश्यकता ना पड़े।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई

0: विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज उसके यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत

0: मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने

0: रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने।

गाने सुहाने सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, और आज का गाने सुहाने कार्यक्रम केंद्रित है रक्षाबंधन पर।

श्रोतो, आज हम रक्षाबंधन मना रहे हैं और इस पावन पर्व पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये त्यौहार भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है, उन्हें एक डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर रक्षाबंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। माता पिता के स्नेह, प्यार, ममता, उनकी मीठी डांट के बीच भाई बहन बड़े होते हैं। कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, कभी रूठते हैं, कभी एक दूसरे को मनाते हैं। क्या कहें, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा नाजुक है जिसकी डोर प्रेम और स्नेह से बंधी होती है।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज का ये प्रोग्राम केंद्रित है रक्षाबंधन पर्व पर। श्रोताओ, रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं की बात अगर हम करें तो राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशम का धागा भी बांधती थीं, इस विश्वास के साथ कि ये धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं रानी मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना उसे मिली, और रानी तो लड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। तो देखिए, इस कच्चे से धागे की ताकत का अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा कि किस तरह से ये एक दूसरे को बांधे रखता है, उनके विचारों भावनाओं को एक दूसरे से मिलाता है।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
2: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है राखी पर्व पर। राखी यानी प्यार का एहसास, ऐसा बंधन जो न केवल अपने परिवार के भाई बहनों के साथ होता है, बल्कि ऐसा नाता जो पराए लोगों को भी अपना बना देता है। प्यार और मिठास रिश्तों में घुलता है। रक्षाबंधन से संबंधित पौराणिक कथाओं की बात श्रोता हम कर रहे थे कि किस तरह ये पर्व मनाना शुरू हुआ था। एक अन्य प्रसंग के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पूर्ववास को राखी बांध कर अपना मुंह बोला भाई बनाया। युद्ध के समय सिकंदर को मारने का वचन लिया। पूर्ववास ने युद्ध के दौरान हाथ में बांधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं भी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था, राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिसमें आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को और कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी की एक और वृतांत भी मिलता है। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उनकी तर्जनी में चोट आई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था और कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया था। कहते हैं, परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई थी।

श्रोतो, अनेक साहित्य ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रक्षाबंधन के पर्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हरिकृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन, जिसका 1991 में 18वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। मराठी में शिंदे साम्राज्य में

विषय साम्राज्य के विषय में लिखते हुए रामराव सुभा राव वर्गे ने भी एक नाटक की रचना की जिसका शीर्षक है राखी अथवा रक्षाबंधन। 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय बना रहा। न सिर्फ राखी नाम से बल्कि रक्षाबंधन नाम से कई फिल्में बनाई गईं। राखी नाम से दो बार फिल्म बनी, एक बार सन 1949 में, दूसरी बार 1962 में। सन 1962 में आई फिल्म को ए भीम सिंह ने बनाया था और इसमें कलाकार थे अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार और अमिता, और इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण ने शीर्षक गीत लिखा था राखी धागों का त्यौहार। सन 1972 में एसएम सागर ने फिल्म बनाई राखी और हथकड़ी, और सन 1976 में राधाकांत शर्मा की फिल्म राखी और राइफल आई, ये दारा सिंह के अभिनय वाली फिल्म थी। 1976 में इसी तरह शांतिलाल सोनी ने सचिन और सारिका को लेकर फिल्म रक्षाबंधन भी बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी।

0: मुश्किलें जीवन को रोकने नहीं बल्कि हमें अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देने आती हैं। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, स्वागत सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम जनवाणी में। इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ खास विषयों पर, और जब आप उन विषयों को सुनकर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा और आपका एक साझा प्रयास है। आज के प्रोग्राम में मैं पवन शर्मा आपके साथ रहूंगी, और स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर है 01892224391। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई। और श्रोताओ, अगर आप भी इस विषय पर अपने विचार हम संग साझा करना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर 01892224391। हेलो।
1: हेलो पवन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से महेंद्र सिंह।
0: जी राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी श्रोताओं को भी ढेरों शुभकामनाएं।
1: देखिए, इस विषय में जो कार्यक्रम का विषय उसके बाद में आऊंगा, पहले रक्षाबंधन के बारे में एक दो बातें करना चाहता हूँ।
0: जी
1: देखिए, कोई भी त्योहार होता है या कोई महोत्सव होता है जो हमको दिन मनाते हैं, उसके पीछे कोई मोटिवेट होती है, कोई महत्व होता है, उद्देश्य होता है।
0: जी
1: देखिए, हम इसमें क्या छुपा है कि भाई और बहन का प्यार। हम सबको देखिए, जो हमसे छोटी है उसको, सभी को, ये जरूरी नहीं कि हमने अपनी अम्मा जाई को ही अपनी बहन समझना है। अपने से छोटी जो भी है उसको अपनी बहन समझो।
0: जी।
1: और जो अपने से बड़ी है उसको माँ के बराबर का दर्जा दीजिए, उसका सम्मान कीजिए।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। और अब विषय पर आ जाते हैं कि सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई, क्योंकि सरकारी संपत्ति का हम बहुत दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारी जब प्रदर्शन होते हैं, कुछ इस तरह से चीजें होती हैं, तो सब उसका तोड़फोड़ करते हैं, उसका नुकसान करते हैं।
1: उसी पीछे पे आ रहा हूं मैं। देखिए, पंचायत घर से लेकर पंचायत से लेकर के एमएलए या लोकसभा तक जो भी है, हम जो प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं उसको हम बोलते हैं सरकार। सरकार की क्योंकि जिम्मेवारी होती है कि हम समाज को, अपने देश को अच्छी नीतियां और अच्छा साधन जुटाने हैं।
0: जी देखिए, नीतियां तो सरकार बना देती है, लेकिन उन नीतियों को फलीभूत हम तभी कर पाते हैं जब हमारा भी पूर्णतः सहयोग उसमें होता है।
1: बात तो पूरी होने दीजिए पवन जी। क्या होता है कि सरकार तो नीतियां बना देती है, लेकिन हमारा, हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये तो सरकारी, मतलब कोई संपत्ति है या सरकारी चीज है, हमको मिल रही है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं।
0: जी
1: देखिए, जैसे हमको जीवन की जरूरतें जो होती हैं, जल वायु और कोई शिक्षा संबंधी या यातायात के संबंधी, सरकार हमको मुहैया कराती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि देखिए, हमको जल मिलता है तो जल का हम दुरुपयोग करते हैं। एक तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जल का वैसी संकट छाया हुआ है
0: जी,
1: तो उसको नल खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, हम वायु को गंदा करते हैं। तीसरा, हम जो होते हैं रोड होते हैं या कोई सरकारी संपत्ति होती है उसका हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं
0: जी।
1: हम ये नहीं सोचते कि ये जो हमारे टैक्स पेड होते हैं उस उनकी वजह से हमारा जो देश चलता है, जो हमारे टैक्स से ही सरकार चलती है। सरकार के पास कोई ऐसा खजाना तो है नहीं कि जो हमको
0: जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, उसके जरिए जो है सरकार की आय होती है, और उसी आय का हिस्सा जो है इन सरकारी कार्यों में सरकार लगाती है, जिनका हम दोहन करते हैं। जी
1: देखिए, ये हमारी संपत्ति है, हमारे द्वारा दिया गया हुआ ही टैक्स जो है, हमारा ही पैसा जो है हम बर्बाद करते हैं, तो हमको इतनी समझदारी से काम करना चाहिए। कोई भी चीज है, सरकारी है, उसको अपना समझे, ये ना समझे कि ये सरकारी है तो इसको व्यर्थ में हम बर्बाद कर दें।
0: जी
1: उसको अपनी समझ करके।
0: चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं संग साझा की महेंद्र सिंह जी, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद पवन जी, नमस्कार।
0: जी श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई है। हेलो, हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं और हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी स्वागत है, और बताएं कि क्या समझते हैं इस विषय से, सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई?
2: हमारा तो मानना है कि वो हमारी अपनी ही है, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति होती है वो हम जनता के ही टैक्स के पैसों से मतलब बनी होती है। तो हम अगर उनका अगर ख्याल नहीं रखेंगे, उनको उनका महत्व नहीं समझेंगे, तो उससे हमारा ही नुकसान है।
0: जी बिल्कुल, हमारा नुकसान
2: जो
0: है।
2: जो भी पब्लिक प्लेस में बने होते हैं, कुर्सी वगैरह हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हो, सब लगभग हमारी ही सुविधाओं के लिए होते हैं। तो हम उनको नुकसान न पहुँचाए, न किसी को पहुँचाने दे।
0: जी बहुत सारे यूथ है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनमें नकारात्मक विचार भरे होते हैं। सरकार लोगों के बैठने के लिए पार्क में झूले लगाती है या फिर कुर्सियां लगाती है, बेंच लगवाती है, तो वो खेल खेल में उन्हें तोड़ देते हैं या झूलों का इस तरह दुरुपयोग करते हैं जैसे उनका अपना है ही नहीं। घर की चीज़ों को बहुत सही से इस्तेमाल किया जाता है, अपनी चीज़ों का जैसे हम ख्याल रखते हैं कि ये टूट जाएगी तो बड़े ध्यान से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बाहर भी यही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें सरकार ने बाहर लगा रखी हैं हमारे आसपास हमारी सुविधाओं के लिए, उन सब का हम बिल्कुल सही से इस्तेमाल करें, और अगर उसमें कोई छोटी सी टूट फूट भी हो जाती है तो सरकार के बिना कहे हम भी उसकी रिपेयर कर सकते हैं या फिर कहीं एप्लीकेशन

0: दे सकते हैं कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं, इनका रख रखाव सही ढंग से किया जाए, है ना?
1: जी बहुत जरूरी है। और हम मतलब कहने का मतलब ये है, सरकार जो भी चीजें करती है वो आम जनता के लिए है करते हैं, तो हमारा भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा नहीं तो केवल उसको सहेज कर रख सके।
0: जी, बहुत अच्छी बात कही है। सहेजना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ते हों, प्यार हो, सामान हो या सामान हो, है ना?
1: जी।
0: जी, तो चलिए, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोताओं संग साझा की। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह के विचार हैं आपके इस विषय के संबंध में। हेलो हेलो,
2: जी नमस्कार,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: जी, स्वागत। और बताएं, सरकारी संपत्ति कितनी अपनी है और कितनी पराई है?
2: जी, सरकारी संपत्ति जो है अपनी भी है और पराई तो मैं नहीं मान सकती। देखो, कोई भी चीज सरकारी हो चाहे भी हो, अपनी है, क्योंकि जो जो सरकारी जो आम संपत्ति थी वो हमारी अपनी होती है, क्योंकि हमारा अपना भी संपत्ति होती है।
0: जी, आपने कभी देखा है टीवी में, या फिर हम रेडियो में कमेंट्री सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, कभी कुछ विरोध भाव दिखाना होता है तो जो हमारा यूथ है या फिर जो लोग उस प्रदर्शन में जाते हैं वो वहाँ की आसपास की चीज़ों की तोड़फोड़ कर देते हैं। कितना नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को इस चीज़ का होता है, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता
2: जी,
0: है।
2: तो इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, सभी इस प्रदर्शन कर, जैसे हमारे यहाँ युवा है, हाँ अपनी मांग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। देखो, हम तोड़ फोड़ करते तो हमारा भी नुकसान है और उसमें बहुत नुकसान होता है। चलो, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। चलो, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं तब तक हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो ये जो तोड़ फोड़ करते हैं ये नुकसान होता है, तो इसलिए तोड़ फोड़ तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रदर्शन आप कर सकते हैं, शांति से
0: जी,
2: कर सकते हैं, लेकिन
0: हम
2: सही
0: हमेशा
2: तोड़ फोड़ों से।
0: अधिकारों की बात करते हैं, हमारे अधिकार हैं, हमें ये अधिकार है, हमें सरकार ने ये अधिकार दिया है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को का पालन सही से नहीं कर पाते, इस बात पर
2: नहीं
0: हम
2: कर
0: टिप्पणी भी
2: पाते।
0: नहीं करते हैं। और
2: जी,
0: अगर हमें प्रदर्शन का अधिकार दिया है, अपनी मांग रखने का अधिकार दिया है, तो वो अधिकार दिया है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ना
2: शांतिपूर्ण करना
0: जी,
2: चाहिए।
0: ताकि प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे और आपसी जो भाईचारा भी बना रहे, और वहाँ का वातावरण जो है वो किसी चीज़ से वो दूषित ना हो, चाहे वो पर्यावरण का प्रदूषण हो, सामान की तोड़फोड़ हो, या जैसे कि पहले भी हमारे श्रोताओं ने बताया कि जल का प्रदूषण हो रहा है या किसी चीज़ का प्रदूषण हो रहा है, तो इस तरह से हमने कुछ भी नुकसान नहीं करना है। चलिए, आपने अपनी विचार हमारे संग साझा किया, और श्रोताओं, आप भी अपने विचार हम संग रख सकते हैं। 01-892-22-4391 ही हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, इस नंबर को डायल करके आप बता सकते हैं कि सरकारी संपत्ति को कितना आप अपना समझते हैं, कितना पराया मानते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो।
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
3: हाँ जी, मैं डॉली बात कर रही हूँ, सूर्य से।
0: नाम फिर से दोहरा दीजिए।
3: डॉली बात कर रही
0: जी,
3: हूँ,
0: डॉली
3: सूर्य
0: जी,
3: से।
0: स्वागत आपका। क्या कहेंगी विषय के संबंध में?
3: जी मैडम, विषय आज का आपका बहुत अच्छा है और इसके ऊपर सभी को जागरूक होना चाहिए।
0: जी
3: जी, जैसे कि अब हम जैसी पीढ़ी है, हमारी है, आपकी है, हमें शायद बड़े बुजुर्गों से यही सीख मिली है, लेकिन जो आगे की यूथ है,
0: जी
3: जैसे आपने बोला कि वो जो प्रोटेस्ट में वगैरह वगैरह पे कर रहे हैं, या मैंने देखा है कि ट्रेन में, ट्रेन के टॉयलेट में,
0: जी
3: बसों में, जो मतलब कुछ ना कुछ लिखा होता है, ये जो
0: जी
3: युवा जो है, ये डैश लव डैश
0: जी
3: और
0: बहुत
3: कुछ,
0: सारे ऐसे
3: ये
0: दिल
3: बहुत
0: के
3: अभद्रता।
0: शेप के या पान के पत्तों की तरह उसमें बना के, जो
3: ये
0: आपका
3: सिर्फ मुझे
0: प्यार
3: लगता है
0: दिखाना
3: कि
0: का तरीका है। जी, वो क्या करते?
3: कमी ये सिर्फ संस्कारों की है, जो हमें संस्कार मिले हैं शायद हम अपनी अगली जनरेशन को नहीं दे पा रहे हैं।
0: जी,
3: फोन की व्यस्तता की वजह से हम पेरेंट्स भी फोन में रहते हैं, हमारे
0: जी,
3: बच्चे भी फोन में रहते हैं, हमारा आपस में
0: तो
3: कम्युनिकेशन
0: ये
3: नहीं है।
0: हमें अभिभावकों को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये जो
3: जी
0: सरकारी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रेन है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इनके रख रखाव में सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, अगर हम उसमें स्क्रैचेस डालते हैं तो जो हमारा पर्यटन है, देखिए, बहुत बहुत सारे पर्यटक जो हैं हमारे भारत में देश विदेशों से भी आते हैं उसे देखने के लिए। अगर हमारा इस तरह का व्यवहार रहेगा कि हम लिखेंगे कि बिल्डिंग में स्क्रैच बनाकर कुछ लिख दिया, पेन से, पेंसिल से, या फिर खुरच कर कुछ लिख दिया, तो वो कितना भद्दा दिखता है। और बहुत बार जो लोग पान खाते हैं, है ना, तो वो कहीं भी चाहे वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो,
3: हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल
0: जी, तो वो
3: लोकली अपने टांडा में ही जाते हैं या हम कोई, क्योंकि जब से ये पान तंबाकू, पहले शायद बचपन में हमने भी नहीं देखा कि इस साइड ऐसी कोई व्यवस्था थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, और जो अब मैं ऐसे पक्षपात नहीं कर सकती कि जो प्रवासी, क्योंकि शायद हमारे वाले जेंट्स भी यहाँ से खाते हो, क्योंकि अब यहाँ ऑल ओवर में ये पहुंच चुका है। पहले हमने ये गुटखा पान के निशान पहले कभी नहीं देखे थे बचपन में, लेकिन अब तो जगह जगह भरे पड़े हैं ये निशान
0: जी। और ये जो थूकने की परंपरा है, कहीं भी थूक देते हैं, और जिन जगहों में लिखा होता है कि यहाँ शौच करना मना है, तो स्पेशल लोग वहाँ पर जाकर ही अपना जो है वो शौच करते हैं, विसर्जन। तो सरकार ने नीतियाँ बनाई होती हैं, वो नीतियाँ कब फलीभूत होंगी? जब हम उस पर मेहनत करेंगे, हम उस पर काम करेंगे, है ना। तो इस तरह अपनी, जिस तरह हम घर की संपत्ति को बचा कर रखते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हमने उसी तरह बचा कर रखना है, अपने देश को साफ सुथरा रखना है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे संग साझा की। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
0: और श्रोताओं, आप भी हमें क॑ कर सकते हैं, 01892-224391। ये हमारे आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन नंबर। और एक कॉलर और हैं। हेलो हेलो जी, ऊंचे स्वर में बोलिए ज़रा।
4: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
4: मेरा नाम सैयम है और मैं जिला कांगड़ा से बात कर रहा हूं।
0: जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के संबंध में? जी, तो इनका कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि वे हमें दोबारा कॉल करें। हेलो
5: हेलो
0: हेलो जी, नाम बताइए अपना।
5: मेरा नाम अमर सिंह है जी, जिला कपूरथला पंजाब से बोल रहा जी। नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, और बताएं कि आज के विषय के संबंध में क्या कहना चाहेंगे?
5: लेकिन सरकारी संपत्ति में ना उसको अपनी संपत्ति समझना चाहिए। प्लांटेशन है, जंगलात जबाट के 500 एकड़ के भी है, 100 एकड़ के भी है, तो ये तार वार लगाते हैं ना कि पेड़ों को बचाने के
0: लिए। जी जी बिल्कुल,
5: पेड़ लगा रखे होते हैं। उस तार को अपने खेत उनके थोड़े होते हैं, जैसे 1 कनाल 2 कनाल 10 कनाल जितने, उनको बचाने के लिए उनकी तार जो है ना खेत में लगाते हैं, अपने खेत में लगा लेते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, जैसे 500 एकड़ का है प्लांट को बर्बाद करना है, हो जाता है क्योंकि जानवर जो होते हैं ना, जो रूम वजह से होते हैं गाँव के, जानवर चार चौथे के जो गाँव होते हैं उनके जानवर होते हैं गाँव बहन से, तो वो जाते हैं फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं, जो छोटे छोटे पौधे लगते हैं अंदर चले जाते हैं तार वार के, तो वो खींच के ले जाते हैं।
0: जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि शायद कुछ सिग्नल की समस्या है। चलिए, आप कुछ तार की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं से अनुरोध रहेगा थोड़ा सा सिग्नल का ख्याल रखें, आवाज़ जो है उनकी थोड़ा सा हमारे तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, उनके बात को हम ठीक से नहीं समझ पाए। 01892-224391 हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, जिसको डायल करके आप विषय से संबंधित अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं।

जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और श्रोता 9:18 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और हम लौटेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। विषय वही है, सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई और

पर्यटन राज्य के रूप में हिमाचल का आकर्षण बढ़ा। 3.5 वर्षों में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचे 7.5 करोड़ से अधिक सैलानी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों को मिल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल की सुरक्षा। और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के तहत नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विदेश में नौकरी का अवसर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में ये योजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। इस योजना के तहत देश भर में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते शुरू किए गए हैं। राज्य पर्यटन के लिए सैलानियों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। बीते 3.5 वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं, जिनमें 2,65,000 विदेशी पर्यटक शामिल है। विधानसभा में कल ये आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए हिमाचल पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज देश सहित प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु व सुखद भविष्य की कामना करती है। शिमला के मेडल बाजार स्थित शिव मंदिर के पुजारी वासुदेव शर्मा ने बताया कि इस

0: रक्षाबंधन का त्यौहार शुभ माना जा रहा है और आज बहनें पूरे दिन भाई को राखी बांध सकती है।
1: जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है, क्योंकि तो इस बार भद्रा कोई नहीं है, तो इसलिए जो ये त्यौहार है आपका पूर्णिमा का 28 तारीख को जो है सारा दिन आप बनाने के लिए सज्ज हैं। पूर्णिमा और अमावस्या होती है, उसमें ग्रहण कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में जो है हर पक्ष में लगता है। तो भारतीय समय अनुसार प्रातः 8:04 से ये ग्रहण लगेगा, 11:00 तक, लेकिन यहाँ सुबह होगी तो यहाँ चंद्रमा ना दिखाई देने से ना ही उसका असर होगा, ना ही मान्य होगा, ना ही सूत्र लगेगा।
0: केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को सुधारने और उसमें तेजी लाने के लिए शुरू की गई रैंप परियोजना के तहत प्रदेश में उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत सोलन जिला के कुनिहार में महिला उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के तहत सोलन जिला के कुनिहार में महिला उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में उद्यमियों को वित्तीय सहायता के स्रोतों, बैंकिंग सुविधाओं, सरकारी योजनाओं, उद्यम स्थापना व विस्तार के अवसरों, नेटवर्किंग और उद्यमिता विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को शुरू करने, विकसित करने व विस्तार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने व्यवसाय में आ रही दिक्कतों को साझा किया, जिसका विशेषज्ञों ने मौके पर ही निदान व मार्गदर्शन किया। समाचार कक्ष से मैं स्वीटी लवली।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
3: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
3: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के पालमपुर में कथित तौर पर पैसों के अभाव और इलाज न मिलने के कारण हुई एक मरीज की दुखद मृत्यु के बाद प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश सरकार पर हिम केयर योजना को बंद करने का आरोप लगाया है। विपिन सिंह परमार ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि केवल 1.5 लाख या 50,000 रुपये जैसे मामूली बजट के अभाव में प्रदेश के बेबस लोग परेशान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हेम केयर और सहारा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से आपातकाल के समय लोगों को समय पर कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार पर राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से इन योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में रबी की फसल में जिला में 7,346 किसानों को बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है, जबकि खरीफ की फसल में 5,376 किसान लाभान्वित हुए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2026 के तहत 31 अगस्त तक फसल के लिए बीमा कवर उपलब्ध रहेगा। किसानों को इसका लाभ देने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। मक्का और धान की फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 1200 रुपए के प्रीमियम पर 60,000 रुपए तक का फसल बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विभाग ने संबंधित बीमा कंपनी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को किसानों को योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विदेश में नौकरी का एक बेहतरीन अवसर राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा प्रदान किया जा रहा है। निगम के माध्यम से

0: इसराइल स्थित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा घर पर मरीजों की देखभाल करने के लिए नर्सिंग सहायक के पदों पर भर्ती की जा रही है। कुल्लू जिला रोजगार अधिकारी विनोद कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 2 लाख रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का एक शीर्षक है, प्रदेश में 15 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों के नहीं होंगे चालान। हिमाचल दस्तक लिखता है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हाईकोर्ट ने रद्द किए कुलपति की नियुक्ति के नियम। पंजाब केसरी के अनुसार आईजीएमसी शिमला में 202 करोड़ का दवा खरीद घोटाला। दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, महिला उत्पीड़न की शिकायतें अब गोपनीय रहेगी, पीड़िताओं को मिलेगा न्याय। दिव्य हिमाचल के शब्द है, 3 साल में हिमाचल में आए 7.5 करोड़ से अधिक सैलानी। रक्षाबंधन पर हिमाचल में सार्वजनिक अवकाश की खबर भी आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। दिव्य हिमाचल का कहना है, हिमाचल में पहली बार रक्षाबंधन पर सरकारी छुट्टी। नहीं लगेंगे एथेनॉल प्लांट, ज्यादा बिजली की खपत वाले उद्योगों पर रोक, अमर उजाला की एक अन्य खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष हुए पूरे, देश भर में जनधन खातों की संख्या पहुंची 59 करोड़ के पार। पर्यटन राज्य के रूप में हिमाचल का आकर्षण बढ़ा, 3.5 वर्षों में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पहुंचे 7.5 करोड़ से अधिक सैलानी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों को मिल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल की सुरक्षा। और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के तहत नर्सिंग योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विदेश में नौकरी का अवसर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनते हैं जनवाणी कार्यक्रम का शेष भाग।

0: चिशोता, आज की बातचीत का विषय है सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक श्रोता हमारे संग जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्कार पवन जी, मैं रत्नचंद बात कर रहा हूँ, ज्वाला जी।
0: जी स्वागत है आपका, और बताएं विषय से संबंधित क्या बातचीत आज के प्रोग्राम में करना चाहेंगे।
1: पहली तो बात है, आपने बोला कि कितनी अपनी कितनी पराई, तो इसका जवाब तो ये है कि ये पराई बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अपनी है सारी प्रॉपर्टी।
0: जी बिल्कुल,
1: जैसे हमारा घर हम समझते हैं वैसा हमें सरकारी जो संपत्ति है उसको समझना चाहिए, और पहले हमें भी समझना चाहिए कि सरकारी संपत्ति है क्या।
0: जी,
1: सारी जमीन जिसमें हमारे पार्क आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं, ये भी सरकारी प्रॉपर्टी है।
0: जी,
1: सारी इमारतें जिसमें स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, सरकारी दफ्तर जितने भी हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तीसरा हमारे आ जाते हैं जितने ब्रिज हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, जितने भी ये है। परंतु सरकार क्या करती है, सरकार उनको बना के अपने नुमाइंदे वहां बैठाती है। जैसे आकाशवाणी बना तो आप वहां, आपका आकाशवाणी का स्टाफ वहां है
0: जी,
1: हॉस्पिटल में उनका स्टाफ है। तो हम क्या करते हैं, पहले में वन बाय वन चलते हैं, हम पार्कों में जाते हैं, वहाँ कुत्ते अपने ले जाते हैं जो हमने पेट पाले हुए हैं।
0: बहुत बुरी बात है, अपने पेट्स को हम वहाँ पे जी।
1: गंदगी हम वहाँ फैलाते हैं
0: जी,
1: थूक देते हैं, इतने बढ़िया वो बनाए हुए हैं चलने के लिए, उसके अगल बगल पहले श्रोता भी बोल रहे थे वो पूरा लाल किया होता। तो ये हमारा एक हमें शर्म भी आती है कि हम देखो कितना बड़ा देश है और कहाँ हम पहुँच गए इस वक्त। और हमारी
0: और पेट्स की बात जब आप कर रहे हैं, तो विदेशों में तो ऐसा है जिसने पेट रखा है वो अगर उसको घुमा रहा है तो साथ ही में वो ग्लव्स लेके जाते हैं, और साथ ही में जैसे वो शौच करते हैं तो उसके बाद उसको उठाकर वो डस्टबिन में डाला जाता है।

0: है, अदरवाइज वहां पर पनिशमेंट की फॉर्म में उनको पैसे देने पड़ते हैं।
1: उन्होंने पूरा इंतजाम किया जी, उन्होंने एक ग्लव्स रखे होते हैं हाथ में, पहन लेते हैं उनको, और एक प्लास्टिक का थैला होता है
0: जी,
1: उसमें वो डाल के वहाँ एक जगह बनाई हुई है, उस वहाँ वो लगा हुआ है डस्टबिन टाइप, उसमें वो डाल देते हैं आगे।
0: जी, और हमारे यहाँ के आसपास के आजकल बरसात लगी हुई है, तो जैसे लोग अपने पेट्स को घुमा के आते हैं, फिर वहाँ चलना कितना दुर्भर हो जाता है, पानी के साथ वो सारा बह बह के हमारे पाँव में, हमारे घरों तक, हमारे घर आंगन रसोई में पहुँचता है, और कितना गंदा लगता है जब ऐसे रास्तों पर हम चलते हैं। रास्ते
1: पवन
0: तो
1: जी, गेट के आगे पोटी करवाते हैं, क्योंकि कुत्ता की आदत है सूखी जगह में पोटी करता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: तो गेट लोग सोए होते हैं उस वेरे से गेट के आगे पोटी कराते हैं, तो फिर निंदनीय है और शर्मनाक है
0: जी। और अस्पतालों की अगर हम बात कर रहे हैं रतन जी, तो अस्पताल तो बहुत साफ सुथरे सरकार ने बनाए हैं, वहाँ बहुत अच्छा स्टाफ रखा गया है, बहुत कुशल लोग हैं जो इतनी परीक्षाएं देकर लोगों को स्वस्थ करने के लिए पहुँचते हैं, भगवान ही होते हैं वो हमारे लिए। तो उन हॉस्पिटल्स में जो शौचालय होते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं कि तीन तरह के डस्टबिन लगाए गए हैं, कूड़ा कहाँ कहाँ फेंकना है। सुबह सफाई कर्मचारी सफाई करके चले जाते हैं तो 10 और 15 मिनट के अंदर ही वो कूड़ा इधर से उधर, और जहाँ हाथ धोने की जगह है वहाँ पर बर्तन धोकर सब्जियाँ या फिर उस जो उसके पानी निकलने का जो निकास होता है वहाँ पर खाना पीना और कचरा फंसा कर आ जाते हैं। जो बाकी लोग वहाँ जाते हैं उन्हें वहाँ खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ, और उसी के वजह से सारा जो ड्रेनेज सिस्टम है चोक हो जाता है, और फिर बदनामी करते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटी की कि ये कुछ करते नहीं है।
0: जी, हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से साफ सफाई हम घरों में रखते हैं, और अगर किसी को अगर हम ऐसा करते हुए देखते हैं, हमें उन्हें टोकना भी बहुत जरूरी है कि आप ये क्या कर रहे हैं।
1: नहीं, जो जागरूक नागरिक हैं वो टोकते हैं, हालांकि पंगे भी हो जाते हैं कई बार, पर जरूर बोलते हैं वो, वहीं जहां बर्तन साफ करते हैं वहीं कई बार देखो उन्होंने उल्टी मार दी होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो बच्चों को साथ लेके आते हैं, देखें वहां वो नहीं है, तो मैं तो यहाँ भी देखा टांडा में, यहाँ तक कि वहीं पोटी करवा देते हैं वो बच्चों से।
0: जी, और बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसी जगह पर हाइजीन का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑपरेशंस हुए होते हैं, वो भी वहीं शौच करने के जाते हैं, और उनके साथ जो मरीजों के साथ उनके सहायक खड़े होते हैं तो वो भी उन्हीं टॉयलेट्स का, उन्हीं शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत गलत बात है। और इसी तरह अगर शहरों में भी अगर सरकारी शौचालय कहीं पर आसपास होते हैं तो लोग वहाँ जाकर वहाँ फ्लश करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो जैसे घर में अगर हम शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि हम हर बार फ्लश करते हैं, अच्छे से इसको साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि गंदगी ना रहे और जो कीटाणु हैं हमारे घर में हमारी हमें बीमारियां ना फैलाएं, तो उन शौचालयों का उनको लगता है हमने 5 रुपये या 10 रुपये दे दिए तो उसके बाद हमारी जिम्मेवारी ख़त्म है, वो देखेंगे, है ना।
1: तीसरी बात है जी, हर आप तीसरी चौथी सरकारी बिल्डिंग देख लो उसके ऊपर काई जमी हुई है, बड़ी लंबी लंबी घास उगी हुई है।
0: जी जी,
1: तो हमारे घर में देखो एक पत्ता भी आपको नजर नहीं आएगा ऊपर टेरेस में।
0: जी जी जी,
1: तो हमारे पास आजकल जितना भी नया स्टाफ आ रहा है बहुत जोशीले हैं लोग सारे, आप एक बार उनको मोटिवेट कर दो, एक दिन हफ्ते में 1 घंटा लगाओ सारा साफ हो जाएगा, पर कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है
0: जी।
1: और जो 10 साल में उसने लीक होना, वो 3 साल में लीक होना शुरू हो जाता है।
0: इसी तरह अगर हम पंचायतों की बात करें या म्यूनिसिपल एरिया की बात करें, तो जहाँ भी बड़ी बड़ी घास उग जाती है, जो घास मतलब बहुत बुरी होती है, जिसका जैसे फुलनू जिसको बोलते हैं, वो उगाता है इस तरह का, जो श्वास जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत हानिकारक होता है, वो उसको काट छांट देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे आसपास कितना कचरा फैला है, क्या घास उगा हुआ है, लेकिन इसके लिए तो कोई जागरूक जो है व्यक्ति है वो चाहिए जो इस तरह के काम करे, और थोड़ा बहुत तो हम भी मदद कर सकते हैं अगर हम फ्री हैं तो, इस तरह से मदद की जा सकती है।
1: जी जी, इसको श्रमदान बोलते हैं ना जी, हम करते रहे हैं नौकरियों में आधा घंटा 5 मिनट ही करो आप दिन में
0: जी,
1: तो अपने आसपास का जो अपने ऑफिस का एरिया है उसके छतों पर जो घास है उसको तो हम 5-10 मिनट में, 10 आदमी लग जाए तो 2 दिन लग जाएंगे, क्या होगा
0: जी बिल्कुल।
1: और इसको खुशी खुशी करेगा आदमी, क्योंकि हमने ही तो वहां उस दफ्तर में बैठना है।
0: बिल्कुल, चलिए।
1: और अगली बात है जो हमारे ब्रिज हो रहे हैं, इसमें हम देखो आप किसी भी पुल के देखना करोड़ों रुपया लगता है एक पुल बनाने में, उसमें पीपल के पेड़ उग गए हैं, बट वृक्ष बड़े बड़े दरख्त उग गए, उनको लेंटर को हला देंगे 10-15 साल में।
0: जी बिल्कुल,
1: चलो पीडब्ल्यूडी का ध्यान नहीं जाता, यदि किसी और का ध्यान भी जाता तो उनको काट दें या उनको बताएं पीडब्ल्यूडी कि इसको काटो नहीं तो ये पुल जो है फट जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने सरकार को एक बार चिट्ठी भी लिखी थी
0: बहुत
1: तो उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हमको इसके ऊपर ध्यान देना है, इससे क्या होगा, सब साफ सफाई भी होगी। और दूसरी बात, हम जो उद्घाटन करते हैं हमारे मंत्री और दूसरी विचार अकादमी उस प्लेट को तोड़ देता है रात को आके, उसमें 5-10 हजार रुपया खर्च हुआ होता है। तो हमारी मानसिकता भी थोड़ी ओछी है, इसको बदलना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, पुल तो हमारा हो।
0: जी बिल्कुल, मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद को भी जागरूक करना पड़ेगा। और आपने हमारे संग इतने अच्छे विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। श्रोताओ, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 01-892-224-391, ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, और बता सकते हैं कितनी सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है या पराई है। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
2: मैं जयकरण सराफ,
0: स्वागत है। तो बताएं कितनी अपनी समझते हैं सरकारी संपत्ति को।
2: देखो जी, सरकार तो कोई भी निर्णय लेती है, कोई काम करती है, जनहित के लिए करती है, हमारे लिए करती है। और हम इस ऐसी सुविधा को मतलब दरकिनार कर देते हैं
0: जी।
2: कई जगह ये, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं लैटरिन बाथरूम की बात करूंगा। मैं ऐसे मतलब पंचायतों में जो बने होते हैं ना, बने तो जनता के लिए होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं
0: जी बिल्कुल।
2: पर बाहर जो है ना, वर्कर नहीं बैठा होता उनमें जी। अच्छा, जहाँ भी वर्कर होते हैं वहाँ साफ सफाई ठीक होती है, कोई ऐसी बात नहीं है
0: जी।
2: क्योंकि एक दो आदमी को वहाँ रोजगार मिल जाता है
0: जी।
2: एक बार ऐसे जहाँ पंचायत एरिया में बने होते हैं ना टॉयलेट वगैरह, वहाँ घुसा तो आपने मानोगे नहीं, आप बीड़ी के टुकड़े और सिगरेट के इतने पड़े कि पैर रखने को जगह नहीं थी अंदर
0: जी।
2: और उसको जो बुझाते हैं ना, वो उसकी दीवार पर ही बुझाते हैं, उसमें कई जगह चिन्ह पड़ गए।
0: देखिए कितना संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है उसको पेंट करने में और दोबारा से उसको रिपेयर करने में। अगर वो चोक हो गया, उसमें बंद हो गया उसका, तो फिर वो किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा। और इस तरह की एप्लीकेशन जब हम देते हैं, इसको भी समय लग जाता है, और जिसको ये सुविधा चाहिए उसको फिर मुश्किल हो जाती है, कहाँ जाएं, है ना।
2: नहीं, मेरी बात एक सुनो कि जैसे हम अपने घर में बनाते हैं ना, तो 4-5 लाख रुपए एक लैटरिन बाथरूम में खर्चा आ जाता है जी।
0: जी जी,
2: उसको हम कितना संभाल के रखते हैं। शायद एक बार नहीं, दो दो बार भी पोछा या और वगैरह इसमें मतलब वो करते रहते हैं सफाई उसकी है, तो वहाँ क्यों वो नहीं हमारा वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अस्पतालों में देखो ये हाल है, वहाँ भी वर्कर नहीं होते हैं, स्कूलों में नहीं होते हैं, पब्लिक प्लेस में जो बने होते हैं पंचायत एरिया में, उनका वर्कर हो, उनका एक दो आदमी का रोजगार चला जाए, 10 रुपए मतलब देना पड़ते, वो बड़ी बात नहीं है जी।
0: जी, और स्कूल्स की बात जब आ रही है, तो स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो अब टीनेज में जा रहे हैं, वो जोश जोश में खेल खेल में स्कूल के बेंचेस तोड़ देते हैं, खिड़कियां दरवाजे तोड़ देते हैं, मस्ती मस्ती में कि हमने ये तोड़ दिया तो कौन पूछेगा, कौन देखेगा। लेकिन
2: दूसरी बात ये है कि ऐसी बद्दी बद्दी चीज है, मतलब वो लिखी जाती है ना चीजें, मतलब पढ़ के शर्म आती है
0: जी। और इस तरह की कार्य जो है हमें नहीं करने हैं, जिसके कारण दूसरे लोग भी, हमारे बड़े भी शर्मिंदा हों और खुद हम भी शर्मिंदा हों, है ना
2: जी।
0: चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे संग साझा की, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं 01-892-224-391, ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और एक और श्रोता हम संग जुड़े हैं। हेलो जी।
3: हेलो जी, दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं, कौन और कहां से बोल रहे हैं।
3: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़
0: जी। स्वागत है, और क्या कहेंगी आज के विषय के संबंध में। विषय है सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई। सरकार ने सड़कों के आसपास पेड़ पौधे लगा रखे होते हैं और उसमें जाले भी लगा रखे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पशु जो है उसको खाने की कोशिश करते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, तो क्या कभी आप उनको रोकती हैं, हटाती हैं।
3: जी जी जी, हटाते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, उन लोगों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और जितना पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे उतना ही हम लोग हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी हवाएं उन्हीं से ताजगी बरकरार है।
0: जी, तो जिस तरह हम अपने बच्चे को पालते हैं ना, पेड़ लगाने से अपने आप तो वो बड़ा नहीं होता है, उसको पानी भी चाहिए समय से और उसको पशुओं से भी बचाना है, तो इस तरह की देख रेख जो है अगर हमारे पंचायत एरिया में या फिर हमारे आसपास के इलाके में सरकार कुछ सुविधाएं, कुछ जैसे आजकल

0: पार्क बना रही है सरकार, तो बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ लगाए जाते हैं। तो अगर वहाँ आपको दिखता है कि कोई गमला जो सूख रहा है, आपके घर के में पानी है, तो ले जाकर हम उसको दे सकते हैं, उसकी उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम करें तो हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा, है ना जी। और क्या कहना चाहेंगे विषय के संबंध में?
1: जी दीदी, जो ये हमारे शासकीय जो भी धरोहर है उन्हें हमें सहेज के रखना चाहिए, और हम सभी को सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तभी आगे जाके सभी चीजों का हल मिलेगा और हमारा पर्यावरण और हम सभी सुरक्षित रहेंगे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, इसका हिस्सा आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोताओं, बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता हमारे संग साझा कर रहे हैं, कितने जागरूक लोग हैं जो विषय से संबंधित। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी, मैं
0: नम
2: राकेश गुप्ता दाड़ी से बोल
0: जी,
2: रहा हूँ।
0: स्वागत।
2: जी
0: क्या कहेंगे आज के विषय के
2: धन्यवाद।
0: संबंध
2: अच्छा
0: में?
2: मैडम, सबसे पहले तो आपको समस्त आकाशवाणी परिवार को राखी के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं मैडम जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और
2: धन्यवाद
0: आपको भी
2: धन्यवाद
0: शुभकामनाएं जी।
2: धन्यवाद जी। अच्छा सबसे पहले तो आज मैं एक छोटी सी बात से शुरू कर रहा हूँ कि एक बार पता क्या हुआ मैडम जी,
0: जी
2: कुछ लोग कश्ती में बैठ के नदी को पार कर रहे थे। जब कश्ती बीच में पहुंची, नदी के बीच में पहुंची, तो वो डूबने लग पड़ी। तो कुछ लोग कहने लगे किश्ती डूबने लग पड़ी, तो दूसरे कहने लगे डूबने दे, ये कहाँ हमारी है। मेरा कहने का मतलब है कि हम ये सोच के काम करेंगे कि ये कहाँ हमारा है तो हम कहाँ सक्सेस होंगे मैडम जी,
0: जी
2: खुद भी तो डूबेंगे। अगर किश्ती वालों को बोले अगर डूबने लग पड़ी तो कहाँ हमारी, तो वो खुद भी तो डूब रहे हैं मैडम जी।
0: जी
2: तो
0: और
2: वही मैं देखता हूँ ना मैडम जी, जैसे हम कोई स्ट्राइक होती है, बसों को तोड़ रहे हैं, आजकल वंदे भारत ट्रेन चली हुई है उसमें पत्थर मार रहे हैं, तो कई जगह क्या होता है मैडम जी, कई कई गांव में सिर्फ दो दो बसें दिन में जाती हैं,
0: जी
2: ठीक
0: बिल्कुल।
2: है ना जी। अगर दो बसें उनको हम शीशे से तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, जला देंगे, तो वो वहां तो बस रुक जाएगी जाने के लिए, तो
0: जी
2: कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पब्लिक को नुकसान होगा, ये भी हमें देख रहे हैं ना मैडम
0: जी ये सोच हमने सभी ने
2: जी।
0: बना कर रखनी है। जंगलों में लोग जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, चाहे टूरिस्ट की बात करें, आम जनता भी अगर टूरिस्ट अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, फैमिली वालों, दोस्तों के साथ वो घूमने फिरने चले जाते हैं जंगलों में, वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठे करके खाना बनाते हैं, वो करते हैं, बाकी वो आग नहीं बुझाते वहाँ पर, और बाद में क्या होता है कि जंगलों में आग लग जाती है, तो वहाँ पर छोटे
2: बिल्कुल
0: छोटे
2: बिल्कुल
0: जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, जो हमारे पुरानी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो पौधों की हो चाहे पशु पक्षियों की हो, वो सब खत्म हो जाती हैं।
2: हाँ जी, और इसी कारण मैडम जी जो वहाँ के जो पशु पक्षी या जानवर है ना, वो शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहरों में आके नुकसान कर रहे हैं वो, ठीक है ना। उनको तो खाने के लिए चाहिए, तो वो लोगों को खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखा हमने कई बार पढ़ते अखबारों में तेंदुआ जा रहे हैं, कई शहरों में तेंदुआ जा रहे
0: जी
2: हैं,
0: बिल्कुल
2: बच्चों को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना जी मैडम जी। तो ये तो
0: जी
2: हमें सोचना होगा ना, हमने अपनी, जब तक मैडम जी हम ना मेंटली हम प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तब तक हम मतलब डेवलप होना का बड़ा मुश्किल है कि हम घर में बाहर एंटीना लगा देंगे, बड़ा जैसा लगा देंगे, डिश लगा देंगे, पर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो उसका क्या फायदा मैडम जी।
0: जी बातें तो
2: तो
0: सभी करते हैं, देखिए
2: हाँ
0: कुछ
2: जी मैडम,
0: घटना हो जाती है, फटाफट वीडियो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो अपने व्यूअर्स पाने के लिए वो उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें उनकी कितनी भागीदारी है उसको रोकने की, या चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी का
2: हाँ जी
0: एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको कितनी मदद उसने पहुँचाई है। तो इस तरह के जो लोग विचार अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, उन्हें ये होता है कि कितना मज़ा लोगों को देना है। हाँ, सूचना और संप्रेषण का बहुत अच्छा माध्यम है जो हमारे पास इंटरनेट है, बट हमें कहीं ना कहीं अपना योगदान उसमें पहले देना चाहिए कि किसको प्राथमिकता देनी है, हमें वीडियो बनाने को प्राथमिकता देनी है कि जिसको मदद की
2: हाँ
0: ज़रूरत
2: जी।
0: है उसको प्राथमिकता
2: और
0: देनी है।
2: दूसरी दूसरी बात मैडम, यहाँ धर्मशाला की बात करें तो यहाँ डस्टबिन लगे थे, बहुत अच्छे डस्टबिन लगे थे यहाँ, ठीक है जी, डिजिटल डस्टबिन लगे थे, वो कूड़ा उठाते थे। तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ बड़े बड़े जो गद्दे घर के, वो उनमें ठोसने शुरू कर दिए, और उनके वो ऊपर के जो ढक्कन थे वो टूटने शुरू हो गए। जो ढक्कन टूटने शुरू हो गए तो कवारी लोग उसको ले जाने उन्होंने शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंत तक क्या हुआ कि उन डस्टबिनों को हटाना पड़ा,
0: जी
2: ठीक है ना जी मैडम। तो अगर हम ये सोच रखते कि हम थोड़ा बहुत कूड़ा डालते तरीके से डालते, तो आज मतलब बिल्कुल साफ सफाई रहनी थी।
0: तो जैसे
2: और
0: वो डस्टबिन रखे हैं, वो गद्दे अगर नीचे भी रख देते तो वो कूड़े वाले उठाकर ले जाते हैं, और
2: जी ले
0: जहाँ
2: जाते
0: उसका
2: थे,
0: डिस्पोज करना होता है वहाँ पर उसको कर देते हैं, लेकिन ये लोगों की समझ होनी चाहिए कि इसमें डालने के बजाय आप इसको साइड में रख दें। तो बस ये छोटी छोटी समझ की बातें हमने अपनानी है। और
2: एक हमारे हमारे ना मैडम जी दाड़ी बाजार में डस्टबिन था, उसमें इतना भारी उसमें कूड़ा था और इतनी बदबू थी।

0: ख्याल तो हम सबको रखना है कि जो पानी आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही लोग जो हैं उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीमारियां तो अपने आप हमारे हमारी गलतियों की वजह से हमारे घर में आ रही है।
1: सरकार तो हमारे लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रही है कुछ, तो हमें भी अपनी सोच बदल कर और थोड़ा उसके साथ हमें बढ़ना होगा, तब जो है ना भारत एक विकसित देश बनेगा मैडम
0: जी। और ये मैं की भावना जब हमारे अंदर से निकलेगी तो शायद भारत विकसित भारत, वैसे तो अग्रसर है विकसित भारत बनने की तरफ, लेकिन जो थोड़ी सी कमी है वो कमी हम सुधारेंगे, खुद में गलतियां ढूंढेंगे और रोगों को रोकेंगे, इन जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको भी रोकेंगे, बेशक हमारा झगड़ा हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन अच्छे काम का प्रयास थोड़ा सा दुखदायी होता है जी।
1: अब हम देखते हैं ना मैडम, जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें अब बड़ा सोच में फर्क पड़ा हुआ। अब एक टूटी का छिलका भी होता है ना, उसके लिए वो डस्टबिन ढूंढते हैं बच्चे छोटे छोटे, हम देखते हैं ना जी,
0: क्योंकि उनको स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि अपना कूड़ा जो है वो ऐसे नहीं फेंकना है, बैग में रखो और जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ फेंक के आएंगे, तो इस तरह की विचारधारा हमें अपनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने हमारे संग साझा की, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत धन्यवाद
0: जी। श्रोताओ, प्रोग्राम है जनवाणी और विषय है सरकारी संपत्ति कितनी अपनी कितनी पराई। इस विषय पर बात करने के लिए अगले श्रोता हमारे संग है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
2: मैडम जी, मैं गोपालपुर सरकार घाट से बोल रहा हूँ, नागेंद्र सिंह नेगी
0: जी। नेगी जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के विषय के संबंध में?
2: मैडम जी, सबसे पहले तो आप सब बहनों को तहे दिल रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद
0: जी। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी। और ये जो आज का विषय है, ये सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति का स्वामित्व भले ही सरकार के नाम पर हो, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है जी।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा या इसका रक्षाबंधन, तो हम लोगों को भी इसका जो रक्षा सूत्र बांध करके इस संपत्ति की रक्षा करना जो है हमारा एक नैतिक कर्तव्य है जी। और सार्वजनिक संपत्ति किसी दूसरे की नहीं है, बल्कि वो हमारी खुद की है, हमारे टैक्स से वो चीज बनी हुई है। हम लोग सुबह से शाम तक टैक्स दे करके, हमारे बुजुर्गों ने टैक्स दे करके इस संपत्ति को बढ़ाने में सरकार का सहयोग किया है, तो ये कुल मिलाकर के चाहे वो डाक सेवा है, परिवहन है, स्वास्थ्य है, विद्युत सेवा है, या यहाँ तक कि ये जो हमारा गंगा माँ जिसको हम कहते हैं, ये इसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है। अब गंगा को जल को गंदा करना ये किसी भी तरह से जो है वो न्याय उचित नहीं है। और ये चाहे वो राष्ट्रभक्ति का गीत है या राष्ट्रगान है या राष्ट्र की संपत्ति है, ये सब राष्ट्र प्रेम के द्योतक हैं जी।
0: जी, और तो ये गंगा की बात आप कर रहे हैं, तो नमामि गंगे अभियान तो बेशक चला है, लेकिन लोगों की आस्था ये है कि आप गंगा में डुबकी लगाएंगे, जो वस्त्र आपने धारण किए वहीं फेंक कर आ जाएंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाप आपके तभी नष्ट होंगे जब आप कुछ साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने आप को बदलेंगे, और ये मानसिकता नहीं रखनी है कि जो भी है, लोग अपने घर का कूड़ा कबाड़ा उठाकर दूसरे के घरों के सामने रख दे रहे हैं या फिर पानी में बहा दे रहे हैं, अपनी तरफ से तो वह सफाई पूरा अपना साफ सुथरा रख रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर नाक पकड़ कर निकलते हैं कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये बदबू हमारी ही फैलाई हुई है।
2: बिल्कुल सही कहा मैडम जी, गंगा हमारी माँ है और ये आस्था हमारे राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है, और ये इस देश की संस्कृति और संस्कारों का मूल है, आधार है जी।
0: जी,
2: और ये इस तरह से हमें इन इन सब चीजों को, इनकी सब सरकारी जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी रक्षा संरक्षण जो है हमारी एक मौलिक जिम्मेवारी है। विश्व बलोर बनना चाहिए, खुद भी इसमें जागरूक होना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि हम विकासशील देश से जो है वो बहुत जल्दी विकसित देश बन सके
0: जी। लोग कहते हैं कि वो देश डेवलप्ड है, विकसित है, हम अभी विकासशील की स्तर पर ही हैं। विकासशील जो है डेवलपिंग से डेवलप में कब जाएंगे? जब हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे। ये मानसिकता जो है हमारे मिला जुला प्रयास होना चाहिए सभी का
2: जी। मैडम जी, और ये सिर्फ कानून तो जरूर बना है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो, लेकिन इसको प्रभावकारी और कठोर बनाने के लिए जो जोर देना है वो इस राष्ट्र के जो नागरिक हैं, जो इस देश के राष्ट्र प्रेमी हैं, ये उनकी मौलिक जिम्मेवारी है। और ये

0: इसकी रक्षा सुरक्षा, ये सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति, ये चीज मान करके चलना चाहिए। और इसमें हमें कहीं पर भी कोई कोताही अगर करते हैं तो हम अपने मूल, हम कर्तव्यों की बात तो करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक कर्तव्य है
1: उसे हम भूल जाते हैं।
0: संपत्ति को पूरी जिम्मेवारी के साथ उसका जो है संरक्षण करना, उसका रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र, आज जो रक्षाबंधन है इसमें संकल्प लेना चाहिए कि सरकारी संपत्ति को भी हम उसी तरह से रक्षित सुरक्षित करेंगे जैसे हम अपने घर गांव के चीजों को
1: सुरक्षित करते हैं जी,
0: रखते हैं और उसका सही सही उपयोग करें।
1: जी नागेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात है हमारे संग साझा की, प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार जी।
1: जी श्रोताओ, बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है और आप भी हमें बता सकते हैं क्या विचार हैं आपके सरकारी संपत्ति को लेकर। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
2: जी मैं त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा हूँ।
1: जी त्रिपुरा से बोल रहे हैं और बताएं क्या कहना चाहेंगे सरकारी संपत्ति के बारे में, कितनी अपनी है और कितनी पराई है आपके लिए।
2: जी जी, ये तो बस सोच का फर्क है, हम अगर सरकारी संपत्ति को भी अगर अपना समझे तो वो भी अपना है, और अगर अगर अपना नहीं समझे, सिर्फ अपना को ही अपना समझे तो ऐसे तो बिल्कुल। हम ये देखिए, सरकार जो भी हम सबके लिए संपत्ति रखता है वो तो हम सभी के काम में लाते हैं और इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, इसमें जो जितने सामान होते हैं सभी अपने हैं और इसीलिए हम सभी के लिए, और बस हो गया या फिर ट्रेन हो गया, सभी तो देखिए सरकारी संपत्ति है, लेकिन इसको अगर अपना समझे तो अपना है, तो हम सबके लिए सोच का फर्क है बस।
1: जी तो आप इस संपत्ति को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं?
2: जी जी, जब भी हम देखिए कहीं अगर हमें दिखता है कि नल खुला छोड़ दिया है तो नल को बंद करना हो गया, इसके बाद फिर जैसे स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो कभी फैन ऐसे ही चल रहा है, उसको उसका कोई मतलब कि लोग नहीं है फिर भी चल रहा है तो उसको भी वो करना, मतलब इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखें और जागरूक करें तो हम सबके लिए, देश के लिए और भी फायदे होंगे।
1: जी अब सर्दियां आने वाली हैं और बहुत सारी जो सरकारी बसेज हैं या प्राइवेट बसेज हैं लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, मूंगफली खा रहे हैं उसके छिलके उस बस में ढेर लगाए जा रहे हैं, तो आप मतलब लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई और आकर बैठेगा तो उसे वहाँ पर कितना गंदा अनुभव होगा कि कूड़े कचरे वाली गाड़ी है। वैसे तो जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन पूरा दिन भर बस चलती रहती है, लेकिन उस समय सफाई नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा ये कर्तव्य, अगर हमारे बच्चे जो हमारे साथ उसमें यात्रा कर रहे हैं अगर वो इस तरह की कोताही करते हैं, छिलके फेंकते हैं टॉफियों के, चिप्स के, या फिर पानी की बॉटल्स जो हैं वो ऐसे लुढ़क जाते हैं इधर से उधर, तो ये चीज़ें ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है, ना कि उस ड्राइवर या कंडक्टर की या फिर सरकार की, क्योंकि सरकार को दुहाई तो हर कोई देता है कि सरकार ऐसे नहीं करती है, सफाई का ध्यान नहीं रखती है, डस्टबिन उन्होंने लगाए हैं लेकिन डस्टबिन का सही इस्तेमाल करना हमारी अपनी सूझबूझ के हिसाब से है, है ना?
2: जी जी जी, जैसे जी जैसे हम अपने घर में साफ सफाई रहते हैं, अगर हम चाहें तो सभी इकट्ठा होके अपने आस पास के इलाकों में भी और जो रास्ते बने सभी को हम साफ सफाई रख सकते हैं और देखने में भी सुंदर लगता है, और कहीं भी अगर कोई लोग आए तो ये बताएं कि देखिए इन गांव में या फिर इन शहर में कितने साफ सफाई है, तो हम अगर चाहें तो अपना शहर को भी ऐसे कर सकते हैं।
1: जी और ऐसे भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं कि जिस दिन छुट्टी वाला दिन हो, जो लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, अगर एक दिन छुट्टी का दिन निर्धारित कर लें और सब मिलजुल कर ये सोचें कि हमने ये प्रयास करना है कि अपने आसपास के इलाके की, सिर्फ अपने एरिया के 8-10 घरों के आसपास की सफाई करनी है, बरसात के दिन है तो कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हुआ है, घास फूस अगर ज़्यादा उग गई है क्योंकि सांप का डर है, बिच्छू का डर है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसमें रात के अंधेरे में हमें भी नुकसान होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जानवर जो हैं वो हमारे घर में आ रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें आने के लिए खुद ही न्योता दिया है। जंगलों को तो हम काट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जंगल काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, और देखिए जो अनाज का अभाव हो रहा है, जो अनाज पहले होता था कि अनाज खेती करते थे आज इस क्षेत्र में की तो अगले साल उन खेतों को छोड़ दिया जाता था, अब लोगों के पास खेत भी उतने सीमित हैं, उस पर खेती करनी है, उसी में पैदावार बढ़ानी है, तो हमें अपने ही चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने ही बीजों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि गुणवत्ता बढ़े, अच्छी चीज़ें बढ़ें, तो उसी तरह हमारे साफ़ सफाई का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा आसपास का जो एरिया है, आसपास का स्थान है, जो खूबसूरत दिख सके, सुंदर लग सके, है ना?
2: जी जी जी बिल्कुल
1: जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे संग की, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: जी श्रोताओ, बहुत ही कम समय अब हमारे पास बचा है, फ़ोन कॉल हम नहीं ले सकते, लेकिन जिन भी श्रोताओं ने हमें कॉल किया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे संग साझा की हैं और किस तरह जागरूक हम हो सकते हैं, किस तरह हम सरकारी संपत्ति को बचा सकते हैं, ये बातें भी आपने सुनी। बस थोड़ा सा हमने अपना प्रयास जारी रखना इस संबंध में और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाज़त, बस यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जगवाणी जनवाणी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे गीतों का कारवां।

श्रोताओ, भाई बहन के इस प्रेम को दर्शाता ये गीत अभी आपने सुना फिल्म तिरंगा से। गीत को गाया था साधना सरगम ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शब्द रचना थी संतोष आनंद की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फरिश्ते का।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।
2: ये चांद सा रोशन

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, अभी आपने फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस विज्ञापन के बाद।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: फिल्म झुक गया आसमां का ये गीत सुना रहे हैं आपको मोहम्मद रफी की आवाज में।

गीतों के कारवां का ये अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म महबूब की मेहंदी से आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के हैं।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राजकुमार व साथियों की आवाज में गाए इस लोक भजन के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दौलत राम की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में ये योजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। योजना के तहत देश भर में 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते शुरू किए गए हैं, जिनमें 33 लाख के करीब महिला लाभार्थी शामिल है। नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है और भोटेकोशी नदी के स्रोत के पास एक नई झील बन गई है। इससे आपदा के और अधिक गंभीर होने के आसार बन गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल में मौजूद 290 भारतीय नागरिक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापता भारतीयों में अलग अलग राज्यों की पन बिजली परियोजनाओं के कर्मचारी और पर्यटक समूह शामिल है। पर्यटन राज्य हिमाचल के लिए सैलानियों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। बीते 3.5 वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं, जिनमें 2,65,000 विदेशी पर्यटक शामिल है। विधानसभा में कल ये आंकड़े प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए हिमाचल पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को सुधारने और उसमें तेजी लाने के लिए शुरू की गई रैंप परियोजना के तहत प्रदेश में उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत सोलन जिला के कुनिहार में महिला उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के तहत सोलन जिला के कुनिहार में महिला उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में उद्यमियों को वित्तीय सहायता के स्रोतों, बैंकिंग सुविधाओं, सरकारी योजनाओं, उद्यम स्थापना व विस्तार के अवसरों, नेटवर्किंग और उद्यमिता विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय को शुरू करने, विकसित करने व विस्तार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने व्यवसाय में आ रही दिक्कतों को साझा किया, जिसका विशेषज्ञों ने मौके पर ही निदान व मार्गदर्शन किया। समाचार कक्ष से मैं स्वीटी लवली।
0: भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार आज देश सहित प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु और सुखद भविष्य की कामना करती है। शिमला के मिडिल बाजार स्थित शिव मंदिर के पुजारी वासुदेव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार शुभ माना जा रहा है और आज बहनें पूरे दिन भाई को राखी बांध सकती हैं। इधर प्रदेश में रक्षाबंधन के पर्व पर आज सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और भावनाओं

0: से जुड़ा विशेष पर्व है। ऐसे में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रक्षाबंधन के पर्व पर आज सूर्य उदय से सूर्यास्त तक महिलाओं के लिए HRTC की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। आकांक्षी जिला चंबा के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में रबी की फसल में जिला के 7,346 किसानों को बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया, जबकि खरीफ की फसल में 5,376 किसान लाभान्वित हुए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2026 के तहत 31 अगस्त तक फसल के लिए बीमा कवर उपलब्ध रहेगा। किसानों को इसका लाभ देने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। मक्का और धान की फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 1200 रुपए के प्रीमियम पर 60,000 रुपए तक का फसल बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विभाग ने संबंधित बीमा कंपनी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को किसानों को योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: FM एंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे जय हिंद गीतमाला। फिल्म दिल जले से ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं कुमार सानू और आदित्य नारायण की।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रीनिवास और AR रहमान की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म लगान का ये देशभक्ति गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जय हिंद गीत माला का ये आखिरी देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म बॉर्डर से आवाजें हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत जय हिंद गीतमाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FN बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
1: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात

0: राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहां गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी हां श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है
0: जी।
1: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
0: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओं, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
0: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
0: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
0: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं।
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
0: जी,
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
0: जी,
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
0: जी,
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
0: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजी जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी,
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
1: जी,
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे, लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है।

0: एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
1: मेरे पुत्रों।
2: जी पिताजी।
1: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
3: पिताजी,
1: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
3: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
1: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
4: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
3: जी
1: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
3: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
1: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थायी नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
3: जी।
1: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
3: जी पिताजी।
1: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
3: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
0: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
5: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
4: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
2: भला वो क्या?
5: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को, स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
4: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
0: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
5: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
6: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
2: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
5: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
0: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
5: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
6: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
2: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
7: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
5: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
7: हैं?
5: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
7: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
2: नहीं नहीं,
7: अरे
2: नहीं,
7: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
2: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
5: नहीं,
7: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
5: वो
7: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
5: लेकिन
7: अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
5: क्या?
7: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
0: भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
7: मुझे कुछ नहीं सुनना।
4: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
7: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे। चलो चलो चलो।
0: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
7: अब तुम सब राजा के पास चलो।
8: महाशय,
7: चलो, नहीं तो काट के रख दूंगा। चलो।
9: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
10: राजन, हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
1: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
9: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
1: तुम लोगों को कुछ कहना है?
11: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
1: अच्छा, तो ये बात है
11: जी।
1: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
8: जी। महाराज।
0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
1: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
10: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
4: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
0: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
7: खाइए खाइए, लीजिए।
11: जी महाराज,
7: धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
1: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
11: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
4: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
10: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
1: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
1: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
4: महाराज, वहां पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
1: क्या बात है?
11: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
1: अच्छा,
11: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
1: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
10: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
1: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
4: धन्यवाद महाराज।
11: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
1: मैं सचमुच चकित हूँ।
11: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
12: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहां खोई हो बेटी?
3: आप
2: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा एक बात कहूँ?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
2: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
3: हाँ, जी, सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियां एक पायलट में होनी चाहिए।
3: सर, मैं बताऊं?
4: हाँ, सरला तुम बताओ।
3: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
3: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत

0: खूबियां यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर।
2: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
3: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
2: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
4: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
5: I'm so excited.
4: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: our landing fee.
1: कमाल,
2: थैंक यू.
3: बहुत सर लगी है.
2: थैंक यू. धन्यवाद.
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए. अमेजिंग.
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थीं।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया. समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना. लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी.
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं. अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं. इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं. लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया.
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया.
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए.

0: जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
1: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
2: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

महेंद्र कपूर और साथियों का गाया पूर्व और पश्चिम फिल्म से ये देशभक्ति गीत सैनिक साथियों अभी आप सुन रहे थे। गीत के लिए संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए तलाश फिल्म का ये गाना। एस डी वर्मन ने धुन तैयार की है।

0: फिर से तो फरमाना।
1: सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जंगली फिल्म का गाना सैनिक साथियों अब आपके रेडियो सेट्स पर है। मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत।
2: जंगली कहे।

0: कैसा रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

बचपन की वो शरारतें, वो लड़ना और मनाना, कभी रूठना, कभी हंसाना और फिर साथ आ जाना। राखी आई तो फिर याद आया वो बचपन सारा, भाई बहन का रिश्ता ही तो है सबसे प्यारा। नमस्कार सखियों, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी के आज के इस खास अंक यानी के उड़ान में। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उस खूबसूरत रिश्ते के नाम जिसमें कभी नोकझोंक है, कभी रूठना मनाना है, कभी शिकायतें हैं तो कभी बिना कहे एक दूसरे की बात समझ लेने का एहसास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस पावन पर्व की। सखियों, रक्षाबंधन केवल कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास का उत्सव है जो भाई बहन के रिश्ते को जीवन भर मजबूत बनाए रखता है। राखी का एक छोटा सा धागा हमें याद दिलाता है कि रिश्ते महंगे उपहारों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और अपनेपन से मजबूत होते हैं। एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे केवल रक्षा की कामना नहीं होती बल्कि एक खूबसूरत सा संदेश भी होता है कि भैया, जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, हमारा रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। और भाई भी अपनी बहन से यही कहता है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे खास है। सच में सखियों, बहुत ही भावुक पल जब भाई की टॉफी या चॉकलेट चुपके से बहन खा जाती है, जब बहन की कोई चीज़ भाई बिना पूछे उठा लेता है, जब दोनों छोटी सी बात पर लड़ते हैं और काफ़ी लड़ने के बाद फिर से सब कुछ भूलकर एक साथ खेलने लगते हैं। माँ की डांट से बचने के लिए दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी भाई बहन की चोटी खींचकर भागता है तो कभी बहन भाई की शिकायत पापा से करती है। और हमारे बचपन में की गई ये छोटी छोटी शरारतें ही तो आगे चलकर जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। रक्षाबंधन हमें इन्हीं यादों को फिर से जीने का अवसर देता है और भाई बहन के लिए राखी की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना मायने रखती है। आज के समय में भाई बहन अक्सर अलग अलग शहरों में रहते हैं, पढ़ाई, नौकरी और अपनी जिम्मेदारियों के कारण मिलना आसान नहीं होता, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार दूरियों को भी छोटा कर देता है। कभी बहन राखी लेकर भाई के पास पहुंचती है तो कभी राखी डाक से भेजी जाती है और आजकल तो वीडियो कॉल के जरिए भी भाई की कलाई पर राखी बांधने का एहसास साझा किया जा सकता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरी से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। तो सखियों, बहुत सी बातें हमें भी आपसे करनी है लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम और रक्षाबंधन पर समर्पित ये गीत आपके साथ सुनेंगे। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं प्यारा सा।

बहना ना जो पाली बहना इसको कुछ ना कहना इससे दूर ही रहना छेड़ो यूं ना छेड़ो छोड़ो पीछा छोड़ो बहना को न सताओ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी की आज के इस खास अंक यानी के उड़ान में। और हम महिलाओं पर ही समर्पित कुछ पंक्तियां हैं कि हर आंगन को अपनी खुशियों से महकाए रखना, हर आंगन को अपनी खुशियों से महकाए रखना, ये सुंदर जीवन मिला है तो अपनी पहचान बनाए रखना। यूं तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी रास्ते में हमारे, लेकिन हर मुश्किलों से निकलकर अपनी उड़ान बनाए रखना। तो सखियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी लेखनी से लाखों दिलों को छुआ, अपनी सादगी से लोगों को प्रेरित किया और अपनी समाज सेवा से असंख्य लोगों में उम्मीद की रोशनी जगाई। आज का हमारा विषय है सुधा मूर्ति, एक लेखिका, एक शिक्षाविद, एक समाजसेवी और सबसे बढ़कर एक ऐसी संवेदनशील इंसान जिन्होंने अपने जीवन से ये साबित किया कि सफलता का असली अर्थ केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं है बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देना है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिगगांव में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनका गहरा लगाव था। उन्होंने इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने परिश्रम तथा प्रतिभा से एक ऐसे क्षेत्र में पहचान बनाई जहां उस समय महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। लेकिन सखियों, सुधा मूर्ति की कहानी केवल पढ़ाई और करियर की कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, जिज्ञासा की, संवेदना की और समाज के प्रति जिम्मेदारी की। सखियों, कल्पना कीजिए एक युवा लड़की जो ऐसे समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखती है जब ये क्षेत्र मुख्यतः पुरुषों का माना जाता है। उन्होंने चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि अवसर माना। उनकी शिक्षा और प्रतिभा ने उन्हें उद्योग जगत में भी पहचान दिलाई। वे टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियरों में शामिल रही। ये उपलब्धि केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी जो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। लेकिन सुधा मूर्ति जी का व्यक्तित्व यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने साहित्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उनकी लेखनी में बड़े बड़े शब्दों से ज़्यादा महत्व है छोटी छोटी मानवीय भावनाओं का। उनकी कहानियों में हमें परिवार मिलता है, बच्चों की मासूमियत मिलती है, रिश्तों की गर्माहट मिलती है, जीवन के संघर्ष मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इंसानियत मिलती है। सुधा मूर्ति के संबंध में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन बातों के साथ साथ मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी बात पर करवाते हैं अपनी सखियों का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस

अनेक पुस्तकें बच्चों और बड़ों दोनों के बीच लोकप्रिय हुई हैं। सुधा मूर्ति की लेखनी की खासियत ये है कि वह सामान्य जीवन की साधारण घटनाओं में भी असाधारण संदेश खोज लेती हैं। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि ईमानदारी की कीमत होती है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, दया कमजोरी नहीं ताकत है, और जीवन में हमारे पास जो है उसके लिए आभारी होना भी एक बड़ी उपलब्धि है। सुधा मूर्ति समाज सेवा के क्षेत्र में भी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। इंफोसिस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पुस्तकालयों और आपदा राहत जैसे अनेक क्षेत्रों में योगदान दिया। सखियों, सुधा मूर्ति का जीवन हमें ये सिखाता है कि महिला होने के कारण सपनों की सीमा तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर दिखाया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, लेखन को अपनाया, समाज सेवा की और हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सखियों, कलम हो तो ऐसी जो दिलों को छू जाए, ज्ञान हो तो ऐसा कि जीवन बदल जाए, और जीवन हो तो ऐसा जो किसी और के काम आए। और हमें भी अपने जीवन के लिए हमेशा धन्यवाद देना है अपने उन माता पिता को जिनकी वजह से हम ये खूबसूरत सी दुनिया देख रहे हैं और अपने सपनों को उजागर कर रहे हैं। तो ये गीत समर्पित अपने माता पिता के लिए।

इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी का विशेष अंक उड़ान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर है और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोतागण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विविध भारती पर कह दिया है कि रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत मंगलमय हो। साथ ही सुरीला सफर में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, ये इबारत से जुड़ी बात इन्होंने इस कमेंट में लिखी है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और इंतज़ार की हर आहट दिल में एक नई उम्मीद जगा जाती है। तन्हाई में बैठी रूह किसी अपने की तलाश करती है तो सरगोशी उसे मोहब्बत और लौट आने की आस दिलाती है। काली घटाओं से लेकर पुरवैया तक हर मौसम जैसे उसी अनकहे प्यार का पैगाम लेकर आता है। आंखें किसी की सूरत देखने को तरसती है और दिल किसी एक कदम की आहट सुनने को बेकरार है। यही तो मोहब्बत है, जहां दूरी में भी अपनापन और खामोशी में भी एक मीठा सा संवाद सुनाई देता है। फिलीपींस से हमारे श्रोता जुड़े हैं और साथ ही सूरत गुजरात से भी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं का कहना है कि यह संवाद रूह की गहरी तन्हाई और सरगोशी की सांत्वनामयी धीरज के बीच बुना गया एक अत्यंत संवेदनशील और मर्म स्पर्शी आत्म संवाद है। इसमें विरह की टीस, अधूरे अफसाने का दर्द और प्रिय के लौट आने की व्याकुल प्रतीक्षा को बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में पिरोया गया है। जहां रूह अपने टूटे हुए मन और अंतहीन बेचैनी से जूझ रही है, वहीं सरगोशी मीरा मोहन जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम का संबल देकर उस अंतहीन इंतजार को भी एक पवित्र सार्थकता दे देती है। यह इबारत खूबसूरती से बयां करती है कि सच्चा प्रेम दूरी और खामोशी में भी जीवंत रहता है। जहां दो बेकरार दिल भले ही जुदा हो, पर एक अनकहे अदृश्य रास्ते पर एक दूसरे की आहटों में धड़कते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे श्रोता कह रही हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर इंसान का मन अलग अलग, सोच अलग अलग है। प्रेम से भरा एक स्पर्श न जाने कितनी कल्पना, कितनी भावनाओं को जगा देते हैं। मन की सरगोशियां कमाल हैं, यह रूह को छूकर रूह तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। फिर ये मन बेचैन क्यों रहता है? जीवन की सुंदरता छोटे पलों में है, वे पल जब हम ट्यून करते हैं सुरीला सफर और चले जाते हैं एक अनजान सफर पर, जहां है मन को लुभाने वाले गीत आज जी, ये हमारी श्रोता कह रही। हमारे अगली श्रोता कह रही हैं कि रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और तन्हाई में दिल हमेशा ही सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि उदास मन को सुकून मिल जाए। हराहट खामोशी के टूटने का इंतज़ार करती है और यही इंतज़ार कभी अकेला नहीं छोड़ता लगता है कि कुछ तो साथ साथ चल रहा है जो मन अपनापन और मिठास भर देता है। और उन्होंने कुछ गीत भी लिख भेजे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत को किसने लिखा है ये बताइए।

0: पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है। जी हाँ, इसका जवाब आप दे रहे हैं कमाल अमरोही। और जी हाँ, बिल्कुल सही है ये जवाब। और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। अब लेते हैं एक संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारी एक श्रोता कहती हैं कि रूह यानी आत्मा एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जिससे जीवन चलता है, जिसका चुपके चुपके धीरे से कुछ कहना आज की इबारत में लिखा गया है। बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है तब रूह दिल के कोने में बैठकर सरगोशियां करती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। आज के संभाषण में अकेलापन, प्रेम, प्रतीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस आलेख की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बाण चलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार, प्यार, मोहब्बत, तन्हाई, बेचैनी, किसी के आने की आहट, मिलने की उम्मीद के लिए इंतजार में, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, ऐसा वो गाना अंदाजा लगा रही है इस गाने का। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपर हिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास, अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बिल्कुल सही।

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की स्पंदित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है। हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है। हुस्नो इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफुसी फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कनें एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है, तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगली श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहाँ सबको मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से समझौता करना होता है और फिर रह जाता है एक लंबा इंतजार। तुम खास ही नहीं हर सांस में हो, रूबरू नहीं हर एहसास में हो, मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। क्या बात है, आपने तो शायरी भी कर दी है। और फिर बहुत सारी जिंदगियां इंतजार में यूं ही बीत जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम में इंतजार तो होता ही है।

अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज की रूह और सरगोशी की इस अनकहे संवाद ने मन के तारों को छू लिया है। इस भावुक और गहरी इबारत को पढ़कर जो मुख्य शब्द और उन आधारित जादुई गाने जहन में आए, उन्होंने वो गाने भी हमें बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं। साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है। जी,

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतज़ार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज़ थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आरजी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमी को गले लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आफी बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतज़ार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सकें। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है, तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं, गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी, वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं। सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए। एक श्रोता कह रही है कि रूह के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्यौहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक श्रोता कह रही हैं कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी त्यौहार पर, सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फ़ोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्यौहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजनू सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई ज़रूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा

रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा लिए, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतज़ार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही हैं कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है, पर कोई बात नहीं, सुरीला सफ़र में सुरीले गाने बजेंगे तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात आज रक्षाबंधन की मिठाइयाँ मिलने वाले नेक उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही हैं, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर शामिल हुए होंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान बिल्कुल सही जवाब है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है। इसकी हार्दिक बधाइयाँ भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीज़ा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतज़ार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि सरगोशियाँ रूह और खामोशियाँ मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियाँ बंद जुबान की आवाज़ होती है जब मन और रूह की आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। अगला गीत, इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफ़र आपने तय किया है पूजा नारायणिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
1: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है, इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
0: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
1: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
0: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा, इसका संदेह था। और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है, उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
1: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी, उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए। इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर

0: 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 2400 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा

0: पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।
4: बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा

0: लगता है जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायल उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकरी बांह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ में। भरत व्यास की बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राहा होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, हीर राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहाँ पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए ये गाना, फिल्म सारंगा।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था।
1: एक समय था जब गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक खाता खुलवाना, बचत करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन आज वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत ने एक बड़ा बदलाव देखा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले बैंक खाता ने आम जनजीवन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। 28 अगस्त

0: 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य देश के हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और जरूरतमंद लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना था। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खोल सकता है। जनधन खाता आर्थिक सुरक्षा और सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन बना है। जनधन खातों के साथ रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी जुड़ी हैं। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। बड़ी संख्या में महिलाओं के अपने बैंक खाते होने से वे बचत, डिजिटल लेनदेन और परिवार की आर्थिक योजनाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। जनधन योजना ने बैंकिंग को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया। आज जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते हैं। इन खातों में लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपए जमा है। महिलाओं की भागीदारी भी 56% से अधिक है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जनधन खातों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना संभव हुआ। पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना की सीधी सहायता सीधे पात्र नागरिकों तक पहुंची। इसने दिखाया कि बैंक खाता केवल धन रखने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग भी है। आज जनधन योजना का दायरा बैंक खाते तक सीमित नहीं है। ये बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन और वित्तीय जागरूकता को आम नागरिक तक पहुंचाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिजली बोर्ड के क्लास 4 के सभी पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनों को बकाया एरियर का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए की राशि पेंशनरों के खातों में डाली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के हर कर्मचारी व पेंशनर परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने और जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मंडी में जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से विभिन्न नई व उन्नयन योजनाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी शहर में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सितंबर माह में हिम जल दूत मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप नगर निगम मंडी के 13 वार्डों के करीब 10,900 उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ेगी। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार आज देश सहित प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की और वहीं भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए इन्हें उपहार भेंट किए। बहनों का कहना है कि उन्हें इस पर्व का वर्ष भर बेसब्री से इंतजार रहता है।
2: आज राखी का भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्योहार है। मैंने भी अपने भाई को राखी बांधी और उसकी लंबी उम्र की कामना की। उसने मुझे उपहार दिया और मेरी रक्षा करने का संकल्प लिया और भाई बहनों को बहुत ही समय से इस दिन का बहुत ही इंतजार रहता है। इस पवित्र त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमने भी आज बहुत ही धूमधाम से राखी का पवित्र त्योहार मनाया।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। उन्होंने कामना की कि प्यार, स्नेह और आपसी भरोसे का बंधन हमेशा मजबूत और अटूट बना रहे। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहन का रिश्ता स्नेह, विश्वास और अपनत्व से सजा जीवन का अनमोल बंधन है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल वित्तीय समावेशन की वैश्विक मिसाल। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
1: देश के हर नागरिक को मुख्यधारा की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने 12 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था, जिनका बैंक में कभी खाता नहीं हुआ करता था। मेरा खाता भाग्य विधाता के नारे के साथ शुरू हुई इस योजना ने देश की वित्तीय तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस योजना ने प्रारंभ में हर घर को बैंक खाता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2018 में इसका ध्यान ये सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित किया गया कि बैंक खाता रहित प्रत्येक वयस्क के पास बैंक खाते की पहुंच हो, जिससे वित्तीय समावेशन की पहुंच बढ़ सके। ये वंचित और कम आय वाले समूह को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं, आवश्यकता आधारित ऋण, प्रेषण, बीमा और पेंशन प्रदान करती है। देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में ये योजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई। पिछले 12 वर्षों में PMJDY खातों में 4 गुना वृद्धि हुई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों की संख्या 59.9 करोड़ को पार कर गई है, जो भारत में वित्तीय समावेशन की एक अभूतपूर्व क्रांति को दर्शाता है। इन खातों का 77.8% हिस्सा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि 13.14 करोड़ शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में है। ये योजना की व्यापक पहुंच और वंचित और बैंक रहित आबादी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है, जो ऋण, बीमा, बचत और डिजिटल भुगतान तक मजबूत पहुंच को दर्शाता है। जनधन खातों में कुल जमा राशि बढ़कर 3,16,514 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा खाताधारकों को डिजिटल साक्षरता से जोड़ने के लिए 41.29 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिन पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 32.92 करोड़ खाते महिलाओं के नाम है, यानी कुल जनधन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी आधे से अधिक है। इसे स्पष्ट होता है कि बैंकिंग व्यवस्था में महिलाओं की पहुंच बढ़ाने में भी जनधन योजना की बड़ी भूमिका रही है। जनधन खाता बैंकिंग के साथ दूसरी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का भी आधार बना है। जनधन योजना ने देश में जनधन, आधार और मोबाइल, ये त्रिमूर्ति को जन्म दिया। इससे पहले देश के कल्याणकारी तंत्र में लीकेज और भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें थीं। पीएम किसान, मनरेगा और पेंशन जैसी 320 से अधिक सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के जनधन खातों में बिना किसी देरी के पहुंच रही है। इन खातों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने में मदद मिली है। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। जहां एक तरफ योजना ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, वहीं बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि अब अगला चरण इन खातों के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से।
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: मैं बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी।
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से। तुझे ना...

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम,
0: कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल चलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम,
0: हाँ जी,
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे, वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना।
0: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना।
1: जी मैम,
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम।

0: घर का काम भी कर लेती हूँ, बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
1: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
0: जी मैम,
1: तो ये बहुत अच्छा काम है और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
0: जी
1: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
0: जी मैम,
1: वंदना जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
0: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
1: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नज़रिए से देख रही हैं, बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियाँ अपने आप बनी रहती हैं।
0: जी मैम, और
1: अच्छा,
0: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए मैम।
1: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
0: जी मैम,
1: तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
0: मैम रिम झिम बसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
1: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं?
0: जी मैम,
1: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं।
1: जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर

0: मैम
1: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
0: जी मैम, मैं तो यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम।
1: हाँ जी, सुल्तानपुर से बात कर रही हैं।
0: हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम, बट
1: जी
0: जी मैम, और मैं बैचलर हूँ मैम। मैं
1: अच्छा,
0: बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से,
1: जी
0: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
1: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
0: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम
1: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत।
0: जी मैम।

0: मैम, मैंने यही गाया था
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी।
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैम, मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहां से आप बात कर रही हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउस वाइफ हूँ दीदी,
0: जी।
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
1: जी।
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो तो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में।
1: दीदी
0: अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम हैं जो आपको पसंद आते हैं?
1: मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है। जी
0: सेहतनामा अच्छा लगता है।
1: जी जी जी
0: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
1: जी जी
0: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
0: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
1: इसे

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मठरिया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं
1: मैं
0: धानेश्वरी जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और आपने
1: मैं
0: शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं। अपने बारे में
1: हाँ,
0: बताइए हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: घर में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ, अब
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे
1: जी
0: शहरों
1: जी
0: में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
0: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
1: जी, फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
0: अच्छा, और इतने
1: जी
0: सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से
1: जी
0: शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
1: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा था।
0: और आपके क्या क्या शौक हैं?
1: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल वूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है,
0: हाँ
1: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके। जी
0: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
1: जी मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर से भी होता है ना,
0: जी
1: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
0: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
1: ए मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं।
0: जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत
1: हाँ,
0: सुनवाएं आपको?
1: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
0: और आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: सखी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार,
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया
1: नासिक
0: है आपने?
1: महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ,
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जिसमें
1: जी
0: प्लाजो भी
1: मैम,
0: होते
1: जी
0: हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं, और भी कई
1: जी
0: तरह
1: मैम,
0: की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी मैम, जी। सिर्फ
0: अच्छा, बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है
1: हाँ
0: आपको सुनवा रहे हैं, पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहां से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और
0: जी
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी, मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता, महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिसरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है, फिर
0: जी
1: 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे श्रोता
1: हाँ,
0: अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं। आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना, तो
0: जी
1: क्वेश्चन का के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देती हूँ। कभी कभी कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ, जैसे कि मैं अपने पीहर से काफी दूर हूँ, मेरा पीहर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तो
0: तो जब राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही से समझ याद आ जाता पीहर तो, और
0: और
1: रक्षाबंधन में तो बहुत मिस करती हूँ वहां पर जाना। तो मैं चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं

आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतज़ार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल ज़रूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे।

0: से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24-662, अन्य नंबर है 28-670-288, मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24-662। एक और नंबर है 28-670-288, मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: मतलब हद होती है भाई, पता है? एक तो मैं यहाँ पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूँ, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूं। मुझे मालूम था यहां का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो कहाँ कॉफी हाउस की किचकिच और कहाँ नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहाँ सुकून मिलेगा।
3: ये

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल। अब अगर अगले 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे

बुलेट ट्रेन चल रही हो, पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चीटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहां यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा।

पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला आ रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हाँ कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, बड़े स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं, और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो बताए दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला। अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था, और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

इस बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचवाऊंगी किसी दिन, उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने, मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है, आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़ कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं, जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी, दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए, उसने कहा। हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यहीं थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहाँ रही थी।

मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूँ सुकरात, इंतज़ार करना बड़ी चुभने वाली सज़ा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नज़र सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नज़र सुइयों से हट जाए तो शायद इंतज़ार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रोएदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहां एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा, अभी तो कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

पूरे साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं, मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांध कर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहां बैठे थे वहां सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्ज़ाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूं। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूं। क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मोड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकाल कर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रख कर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी, बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा। अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या? पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दें। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर। अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों एक साथ हंसे।

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं।

इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थीं, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? ए सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया। मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है जो अन्य देशों के नागरिक हैं। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज

12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन गैर फिल्मी। सायंकालीन प्रसारण के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए प्रसारण की शुरुआत हम करते हैं प्यारे से भजन के साथ।

अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गाया ये भजन। भजन गैर फिल्में इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल व साथियों की आवाज़ों में गाया इस माता की भेंट को। भजन गैर फिल्मी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
1: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
4: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: अभी श्रोता सुन रहे थे भजन गैर फिल्मी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन रहता है फिल्मी फ्राइडे।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को, हमारे युवा भाई बहनों को, श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी युवा साथियों को, हमारे प्रिय श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपने खूब धूमधाम से ये त्यौहार जो है वो आज मनाया होगा और मना भी रहे होंगे, क्योंकि त्यौहार तो रात तक चलेगा। जी हाँ युवा साथियों, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि आप सभी भाई बहनों की झोली जो है वो हमेशा खुशियों से भरी रहे, और आज बहनें भी अपने भाइयों को लख लख आशीषें जो हैं वो दे रही होंगी, क्योंकि कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो विशेष तौर पर होते हैं रिश्तों को बांधने के लिए। तो ये जो भाई बहन का अटूट बंधन वाला रिश्ता है, ये बहुत ख़ास रहता है। वैसे तो 24 घड़ियां ही भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे को आशीषें देते ही रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कुछ पर्व होते हैं जिनमें हम विशेषतया मिल बैठकर इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज

रक्षाबंधन के त्यौहार की एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बता दें कि आज युवा मंच में रहता है फिल्मी फ्राइडे। इसमें हम आपको अवगत करवाते हैं किसी भी अपने समय के सुपर डुपर हिट फिल्म से। तो आज हमने ली है मन फिल्म। जी हाँ युवा साथियों, वैसे युवा साथियों फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्में मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, ये समाज में हो रहे सभी घटनाक्रमों को पर्दे पर उकेरते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। मनोरंजन के साथ साथ हमें एंड में कुछ ना कुछ सीख भी देकर जाते हैं। तो आज फिल्मी फ्राइडे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिल्मी फ्राइडे में हम बात करेंगे अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म मन की। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व तो होगा नहीं जिसने मन फिल्म को नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका गीत उस समय का इतना सुपर डुपर हिट संगीत और गीत थे कि सबने इसको एक बार नहीं कई कई बार सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े ही रोमांटिक सॉन्ग के साथ।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आज बहुत ही रोमांटिक फिल्म की हम बात कर रहे हैं और वो फिल्म है मन। मन 1999 में रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इंदर कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान और मनीषा कोइराला मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म हॉलीवुड क्लासिक एन अफेयर टू रिमेम्बर से प्रेरित है। इसमें मुख्य भूमिकाओं की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य अभिनेता आमिर खान देवकर्ण सिंह के रूप में और अभिनेत्री मनीषा कोइराला प्रिया वर्मा के रूप में, और अन्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो इसमें अनिल कपूर विशेष भूमिका में थे, शर्मिला टैगोर, नीरज बोरा और रानी मुखर्जी ये इस फिल्म के कलाकार थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और रोमांटिक सॉन्ग की तरफ।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम युवा मंच इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त वर्षा टोच। और आज बात हो रही है फिल्मी फ्राइडे पर। और फिल्मी फ्राइडे में हमारे श्रोता, हमारे युवा साथी जानते हैं कि बात होती है फिल्मों की। जी हाँ युवा साथी, और आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ मन फिल्म की। वैसे तो हमें पता है हमारे युवा साथी जो हैं वो काफ़ी अपडेट रहते हैं, और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में आप सभी फिल्मों से अच्छी तरह से अवगत होंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो पहले सुपर डुपर हिट फिल्में रह चुकी हैं उनके बारे में भी आपको अवगत करवाया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मन की। तो मन फिल्म की अगर हम बात करें तो इसका जो संगीत था वो दिया संजीव दर्शन ने, और सभी गीत जो

लिखे थे, जो सुपर डुपर हिट रहे वो लिखे थे समीर ने, और जो सुमधुर आवाज़ें दी थी वो थी अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अलका याग्निक, और जो संवाद थे वो आमिर खान की आवाज़ में थे। तो चलिए एक और ट्रैक एंजॉय करते हैं हम अपने युवा साथियों के साथ।

युवा साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत हम करते हैं फिल्मी फ्राइडे में और युवा मंच कार्यक्रम में। समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आज मैं आपके साथ हूँ वर्षा टोच। अगर इस फिल्म के संक्षेप में बात करें तो देवकर्ण सिंह यानी आमिर खान एक बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहते हैं और उन पर कर्ज बहुत है, यानी कि वो कर्ज में बहुत डूबे हुए होते हैं और इस कारण वो अमीर व्यापारी सिंघानिया यानी दिलीप ताहिल की बेटी अनीता यानी दीप्ति भटनागर से शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं प्रिया यानी मनीषा कोइराला बच्चों को संगीत सिखाते रहती है और उसकी सगाई राज यानी कि अनिल कपूर से हुई होती है और जल्द ही वो उससे शादी करने वाले होते हैं क्योंकि उसने उसकी ज़रूरत के समय काफ़ी मदद की थी। प्रिया और देव की मुलाकात क्रूज जहाज में होती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर उन दोनों की किसी और से सगाई हुई होती है तो वे लोग अपनी ओर से सारी कोशिश कर 6 महीने बाद मिलना तय करते हैं। इन 6 महीनों में देव अपनी सगाई अनीता के साथ तोड़ देता है और काफ़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। वो कई सारी खूबसूरत तस्वीरें बनाने लगता है और उसके बिक्री होने से वो काफ़ी सफल चित्रकार बन जाता है। वहीं प्रिया को लगता है कि राज को छोड़ना गलत होगा, इस कारण वो देव को खत में सारी बात बता देती है, पर वो खत राज को मिल जाता है और वो प्रिया को देव से मिलने के लिए राजी करता है। जब प्रिया देव से मिलने जाती रहती है तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और प्रिया का पैर टूट जाता है। देव सारी रात प्रिया का इंतज़ार करते रहता है पर वो नहीं आती है तो उसे लगता है कि प्रिया उसे पसंद नहीं करती है। प्रिया इस हादसे और उसके बारे में देव को बताने से राज को मना कर देती है, हालांकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। दिल टूटने के बाद भी देव अपने करियर पर ध्यान देते रहता है और काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार बन जाता है। एक दिन प्रिया उसके कला प्रदर्शनी में आती है और एक चित्र को खरीदने की सोचती है। वो चित्र देव की अपनी प्यारी दादी से बात करते हुए की एक भावुक तस्वीर होती है और उसकी दादी होती हैं शर्मिला टैगोर। देव को पता चलता है कि कोई उस तस्वीर को खरीदना चाहता है, पर देव साफ मना कर देता है कि ये तस्वीर सिर्फ प्रिया के लिए है। आगे की कहानी हम करते हैं लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

जी हाँ युवा साथियों, देव उस तस्वीर को देने से साफ मना कर देता है कि ये सिर्फ प्रिया के लिए है, पर उसे जब पता चलता है कि उस तस्वीर के पीछे की भावनाओं को वो समझती है और अपंग है, तो वो उस चित्र को बिना पैसे के ही दे देने को बोलता है। एक दिन देव अपनी दादी, जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी, की इच्छा के अनुसार प्रिया को पायल देने आता है। देव की नज़र दूसरे कमरे की तस्वीर पर पड़ती है और उसे सच्चाई का एहसास होता है कि प्रिया अब भी उससे प्यार करती है। दोनों आंसुओं के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और वो प्रिया से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे प्यार करता ही रहेगा। इसके बाद देव और प्रिया की शादी हो जाती है और हम ये कहना चाहेंगे कि प्यार अगर सच्चा हो तो अंत में मिलन हो ही जाता है। साथियों, युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोच को ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो वाणी को विराम देने से पहले अंत में अनेकों शुभकामनाओं के साथ हम अपने युवा साथियों से यही कहना चाहेंगे कि त्यौहार तो आज ही के दिन है, लेकिन भाई बहनों का प्यार हमेशा एक दूसरे के दिलों में हमेशा ऐसे ही बना रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए वाणी को विराम देने के लिए। लेकिन वाणी को विराम देने से पहले बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं और अब समय है हमारे शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा का। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया। इसमें आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम खेतीबाड़ी का प्रसारण समय रहेगा 7:10 का। इसमें आज मधुमक्खी पालन के बारे में बातचीत की जाएगी। रात्रि 8:15 पर अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस सुनवाया जाएगा। देश का नाम सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से प्रसारित

प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज फिल्म मस्ती के कुछ चुनिंदा गीत हम आपको सुनवाएंगे। कारवां सुरों का हम प्रसारित करेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम बॉलीवुड वीट्स हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार व रात्रि 8:00 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला। इसका हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा जैसे पर्व भारत की शाश्वत आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। ये पर्व समाज को जोड़ने वाले स्नेह, भाईचारे, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को और मजबूत करते हैं। वे आज जम्मू स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोल रहे थे। राज्यपाल ने जम्मू क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के बीच एक समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की अपार संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में मंदिरों, धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की समृद्ध विरासत मौजूद है। इन पवित्र स्थलों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा और समन्वित प्रचार प्रसार से श्रद्धालुओं को अधिक समृद्ध तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सकता है। साथ ही जम्मू और हिमाचल प्रदेश की साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी देश दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार आज देश सहित प्रदेश भर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। बहनों का कहना है कि उन्हें इस पर्व का वर्ष भर बेसब्री से इंतजार रहता है।
1: आज राखी का भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। मैंने भी अपने भाई को राखी बांधी और उसकी लंबी उम्र की कामना की। उसने मुझे उपहार दिया और मेरी रक्षा करने का संकल्प लिया। और भाई बहनों को बहुत ही समय से इस दिन का बहुत ही इंतजार रहता है। इस पवित्र त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमने भी आज बहुत ही धूमधाम से राखी का पवित्र त्यौहार मनाया।
0: राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटरों का अनशन आज समाप्त हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आग्रह पर यूनियन ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है। यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें धरना स्थल से हटाने की कोशिश भी की गई। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने सरकार पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा टैक्सी ऑपरेटरों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ऑपरेटरों की मांगों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के समक्ष उठाने का भरोसा दिया ताकि उन्हें राहत मिल सके।
2: आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मैंने इनसे भी आग्रह किया, हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप अपने अपने परिवार वालों के साथ घर में जाकर के मनाएं। और मैंने उस आग्रह को जब इनके सामने रखा, इन्होंने सहज रूप से उस आग्रह को स्वीकार किया और आज जो है वो जो अनशन पिछले 5 दिन से चला था आज वो समाप्त हुआ। प्रदेश सरकार के समक्ष हमने पिछले कल भी बात कही थी और उसके साथ साथ हम जाकर के अभी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, हम इस मामले को पूरा केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे ताकि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सभी साथी हैं उनको राहत मिल सके।
0: कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते भेखली क्षेत्र में ब्यासर रोड पर कटाहर गांव के समीप आज दोपहर एचआरटीसी की बस ब्रेक फेल होने से ढांक से टकरा गई। निगम बस की ब्रेक फेल होने पर चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार बस में सवार करीब 46 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 35 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि घायलों में से बस चालक सहित 13 को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सिरमौर जिला के नाहन शहर में सदियों से रक्षाबंधन के पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब समय के साथ ये परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। रियासत काल से चली आ रही ये परंपरा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नाहन शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का भी हिस्सा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रक्षाबंधन के पर्व पर पूरा आसमान पतंगों से भरा नजर आता था और हर आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। उनका कहना है कि बदलते समय के साथ अब ये परंपरा दम तोड़ती नजर आ रही है।
3: रक्षाबंधन में पहले नाहन में पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती थी। सुबह सुबह रक्षाबंधन जब हो जाता था तो भाई सबसे पहले छतों पे चढ़ के पतंगे पकड़ के और पतंगे उड़ाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेंड जो जा चुका है, क्योंकि इसमें जो हमारा ड्रॉबैक हो गया है वो एक तो मोबाइल है, बच्चे आजकल सब 24 घंटे मोबाइल पे होते हैं और जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो बाहर निकल चुके हैं, तो ये पतंगों का जो है ये लगभग खत्म ही हो चुका है, इक्का दुक्का पतंग देखने को।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
6: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सांझ। सुरमय सांझ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, सुरमय सांझ के इस संगीतमय सफर में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा टोच। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म से अभी आपने इस गीत को सुना। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने का मन करता है

और ये तो गीत ही ऐसा है जो भाई बहन के रिश्ते को, अटूट रिश्ते को दर्शाता है। तो इसीलिए हमने इस गीत को फिर से रिपीट किया, क्योंकि आज बड़ा ही पावन त्यौहार है रक्षाबंधन का, इसलिए। तो चलिए, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रोध फिल्म से।

0: अभी गीत आपने सुना क्रोध फिल्म से, संगीत दिया था आनंद मिलिन ने। सुरमई सांझ की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं फिर कुछ गीतों के साथ।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
0: कार्यक्रम सुरमई सांझ में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हमने ली है चंबल की कसम फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने

0: और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ, इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 MHz पर। और आज के संगीतमय सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा टूच। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दुल्हन बही, जो पी अमन भाई फिल्म का यह गीत हेमलता की आवाज़ में।

अभी आपने सुना दुल्हन बही जो पिया मनवाए फिल्म का यह गीत हेमलता की आवाज़ में, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लैला मजनू फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए लैला मजनू फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें आज आपके साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राईंदियां सुना करदे सारे किसान बागवान कने सारे स्रोतियां जो साड़ा दुनी दा राम राम दो हत्थ जोड़ी के नमस्कार। अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कने मेरा साथ दे दे चुन्नी ताई ता चुन्नी ताई तुहांजो भी राम राम
1: राम राम कने सारे जो रखड़ी दियां बड़ी बड़ियां मुबारकां
0: जी। बिल्कुल दिखा जी अज रखड़िया वाला दिन है कने दिखा हाड़ियां सारियां पैणा जिहड़ा सा खूब आना जी अज व्यस्त रही हैं कह कि तिना भराल भी जाना हा रखड़ी बनणी ही कने फिरी ते घर आए वापस आना हा पर दिखा जी अज का दिन तो सह बोलते ना कि भ्यागा तो लेके संझा दिकर बिल्कुल तिना दा पूरा पूरा शुभ दिन भी है कने पूरी व्यस्तता जड़ा ही तिना दी इस दौरान जड़ा सह रही है ना जी।
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: ता इस दे सोगी चुन्नी ताई जी गल करिए अहाँ अजकल दी ता अजकल अहाँ दिखा देन के मौसम दा जड़ा रूप सांजो दिखने मिला दा ना जी कदी धुप कदी बरखा कने कदी बदल तो भाई ये जड़ा ना सारा सब कुछ मिश्रित रूप जड़ा ना हालांकि अहां बोली सकदे कि किसान साथियों वास्ते अच्छा कहें
2: अच्छा, कि उन्हां दी फसलां वास्ते अच्छा है
0: फसलां वास्ते अच्छा कहें कि प्रमुख फसल जड़ा धाना दी हुंदी चुन्नी
2: ताई
0: जड़ा बरखा दा पानी है सै बड़ी अच्छी चीज है तीस ताई
2: कने दूई गल फलां वास्ते भी खरी है
0: सारे बागवानी वास्ते मतलब के हाड़े किसान साथी जड़ा भी किसी भी प्रकार का काम करते खेतीबाड़ी का तो तिना वास्ते ये जड़ा सा बिल्कुल उचित है कने ठीक समय की बरखा जड़ा सा हो जाती पर इस दे सोगी सोगी अहां बोलना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है तो चुन्नी ताई सांझो चाहिए कि कुछ एक सावधानी

0: सांझो रखना चाहीदियाँ। दिखा अहाँ दिखा दे के जगह जगह पर जेड़ा सा कई तरह दी त्रासदी
1: त्रासदी हो रही है,
0: सांझो,
1: नेपाल त्रासदी हो रही है
0: हाँ
1: बड़ी जबरदस्त,
0: दिखने
1: कन्ने
0: मिला
1: आज
0: दी है।
1: भूकंप भी आई है
0: जी, ता
1: कन्ने।
0: दिखा जी इस दे दियाँ त्रासदियाँ ते बचने ताई जेड़ा सा केवल एक मात्र रास्ता यही है चुनी ताई के अहाँ थोड़ी सतर्कता रखन, है ना
1: हाँ
0: जी।
1: सारे प्रयास करना चाहिए कि ना लोगों की मदद करन,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: हर जन जन जो चाहिए कि इसकी मदद करन।
0: जी, देखा जी जालू दे दी कोई किसी भी प्रकार दी त्रास दी है, यंदी हड़ है आला दौड़ा, यंदी हड़ है दूर दराज जिन्हें बीता
1: हाँ
0: जितनी संभव हो सके हाँ
1: मदद
0: जो तो
1: करनी
0: हैं जो सारे हैं जो जेड़ा सा खुली के मदद
1: करनी
0: जेड़ा सा
1: चाहिए।
0: करना चाहिए दी
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी
0: पर ये है कि आए दे दी त्रास दी घटते घट नुकसान हो है, इस वास्ती सांझो प्रयासरत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ
0: कहें
1: जी
0: कि दिखा जी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी जगह जेड़ा सा त्रास दिया जाती है, हालांकि त्रास दिया का कोई रूप नहीं होता,
1: हाँ
0: किस
1: जी हाँ
0: रूप
1: जी
0: विच तिना आई है, पर फिर भी अहाँ कोशिश कर सकते कि जियाँ नदी नालियां का जल स्तर अजकल पता नहीं
1: पता
0: लगा था
1: था
0: कि कालू है तो कालू बढ़ी आंदा कालू आई आंदा, तो हाँ जो चाहिए कि थोड़ा जहा नदी नाले का कंडा ना
1: ना
0: जान।
1: जान। हाँ जी
0: दिखा तो हाँ कल परसों अहाँ तो हाँ सुने के इतनी बड़ी त्रासदी हुई है ना जी, जियाँ कि तुह ना लिया ना जी।
1: हाँ जी
0: तो अगर अहाँ गल करिए कि लोगों की जितनी जान माल की हानि हुई, अगर नदी के किनारे इतने बंदे की आवाजाही नहीं होंगी या इतने इस वक्त इस दौरान नहीं होंगे तो हो सकता है संख्या जेड़ा सा घटी
1: घट
0: भी
1: ही
0: सकती
1: सकती
0: ही
1: सी।
0: त्रासदी दी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो गलाने का मतलब यही है कि भाई बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम बिच सांझो जेड़ा सा थोड़ी देर
1: सतर्कता
0: सतर्कता
1: बरतनी
0: है ना,
1: चाहिए है
0: जागरूकता जेड़ा सा रखना
1: चाहिए
0: ही पौनी है
1: हाँ
0: ना जी।
1: जी हाँ जी
0: तो इस दे सोगी चुन्नी ताई जियाँ के ट्याली दी रीत दे अनुसार एक जानकारी साझा कर देता, अज दी जानकारी जेड़ा सा कुण दे ही है।
1: तो आज जी जानकारी असं लेके आए उन्हें से है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
0: जी
1: तो तुसा दिखा रसीलू राम जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साड़ी भारत सरकार दी निम्न वर्ग के परिवार की महिलाएं जो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने दी एक कल्याणकारी पहल है,
0: जी जी
1: जिसके तहत 1600 रुपए की नगद सहायता जेड़ी की 14.2 किलोग्राम सिलेंडर वास्ते है, उदा मुफ्त रिफिल सिलेंडर कने एक मुफ्त गैस चूल्हा भी दिता जाता है।
0: बिल्कुल कने दिखा जी, अगर अहाँ इस योजना की शुरुआत की गल करिए तो 1 मई 2016 विच शुरुआत जेड़ा सा इस योजना की कीती गई थी, कने
1: जी
0: दिखा
1: जी
0: जी बड़ी अच्छी योजना थी। कह कि इस योजना के तहत जड़ा लक्ष्य रखा गया सह यही रखा गया कि जड़ा भी हड़ियाँ किसान या हड़ियाँ ग्रामीण महिलाएं हैं
1: हाँ
0: तिना दे
1: जी
0: स्वास्थ्य की जड़ा सह सुरक्षा की जाए। कह कि जालू सह खाना बनानी है तो लकड़ियाँ जलानी है या फिर गोबर दे उपले तिना बनाए होंगे,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तिसते निकलने वाला जड़ा धुआं
1: धुआं
0: होंगे
1: आंदा।
0: तो
1: हाँ जी
0: चुनी ताई तो अंजो पता ही है कि कितना भारी हानिकारक होंगे, कने कितना प्रदूषण तिसते इसते
1: फैलदा।
0: फैलता,
1: हाँ जी हाँ
0: कने
1: जी
0: सोगी सोगी महिलाएं कने छोटे बच्चे जड़ा घर है रेंदे है ना जी,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो तिना दे स्वास्थ्य ने भी जड़ा सा कुथी ना कुथी बड़ा हानिकारक प्रभाव होवा दा। तो इन्हां ही चीज़ों ते बचने ताई जड़ा सा इस योजना दी शुरुआत की, ताकि ग्रामीण परिवेश दी महिलाओं जो भी एलपीजी गैस का कनेक्शन जड़ा दित्या जाए कने तिना दे स्वास्थ्य की सुरक्षा जड़ा सा की जाए।
1: कहने तो हम जो पता है कि हर साल लाभार्थी जो अधिकतम 4 सिलेंडर पर सब्सिडी
0: जी
1: मिलती है।
0: जी
1: कन्ने दूसरी गल ये है कि जड़ी साड़ी महिला इसका लाभ ले सकती है उन्हें वास्ते उन्हें 18 साल
0: जी इसते ऊपर वाली हर महिला जेड़ा सा इस योजना का फायदा जेड़ा सा ले
1: ले
0: सकती,
1: सकती।
0: कने चुन्नी ताई दिखा इसा गल्ला यहाँ जारी रख गए, पर समय हो दा एक छोटे दे अंतराल दा, कने अंतराल दे दौरान सुनना हाँ एक सुनेहा कने उसके बाद एक लोकगीत।
1: लोकगीत
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला एसईएल टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चुनीता जी, जियां कि अहां पहले भी गल करा दे हे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दे बारे च, तां दिखा जी बड़ी अच्छी कल्याणकारी योजना जेड़ा सा केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई
3: थी। जी,
2: दिखा जी अहां तो अहां सुने भी होणा कि जालू साड़ियां दादियां, हाड़ियां चाचियां, अना हाड़ियां मम्मी ये सारियां जालू चुल्हे चलांदियां हियां ना, तां एक छोटा जिहा सा तिस भूपणा बोलदे अहां सभी रख्या हुंदा हा, तां जालू जालू तिस भूपणे ने सा फूकां दिंदियां हियां चुनीता जी, तां दिखा कितनी वारी सा खंघ दियां हियां,
3: अना
2: कने कितनी खंघ लगदी ही, तां तालू तां अहां छोटे हे तां अहां ऐसा चीज़ें नहीं समझ ही पाए कि भाई एक बार बार इतनी बारी चुल्ली बखे बहनी है तालू खंघ दियां गए।
3: हाँ जी,
2: हाँ जी, तो यह सारी चीज़ हाँ जो जड़ा सा हूँ समझ आवा दी, कने दिखा जी सरकार भी ये जड़ा चीज़ समझी के कुथी ना कुथी जड़ा सा ये जड़ा चुल्ली ते निकलने वाला धूमा है इस वास्ते जो जड़ा सा बड़ा भारी खतरा है, कने दिखा जी चारों तरफ जालू धूमा फैलने तो जरूरी नहीं कि जड़ा खाना बना दा या बना दी त्यादा ही इस वास्ते खराब होना, पर जड़ा अखे बखे जितने भी प्रवेश है हड़ा लोग हैं तिना दा सारे दा इस वास्ते जड़ा सा खराब होना, क्योंकि ये जहरीली जड़ा वायु है त्या विच अहां सांस लैंदे तां बिल्कुल ये हड़े शरीर ताई जड़ा सा विपरीत असर दसदा ही दसदा।
3: हाँ जी, हाँ जी, तो यही है ना, इस वास्ते एक गल ये भी जरूरी है कि जेड़े परिवार जेड़े तेल विपणन कंपनियां ने जुड़े होने या LPG कनैक्शन तिना वल नहीं होने तिना जो इस गैस का फायदा मिलना है, दूई गल जेड़े गरीबी रेखा के नीचे हो या फिर अंत्योदय अन्न योजना वाले हो या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सही लाभार्थी हो सकते।
2: लाने का मतलब यह है कि जो BPL परिवार है या गरीब तबके के परिवार जो महिलाएं कने जिहा महिला की उम्र जड़ा सा 18 वर्ष के उपर है, यानी कि बेटी भी जड़ा सा इस योजना के तहत जड़ा सा
3: फायदा ले सकती
2: है। जी, फायदा ले सकती, कने 18 वर्ष के उपर वाले सारी महिलाएं जड़ा सा इस योजना ने जुड़ी सकते, कने जुड़ने ताई नज़दीकी जड़ा साड़ी जड़ा गैस वितरक एजेंसी होंगी तिहा लजाई के जड़ा सा संपर्क करी सकते, कने इस दे अलावा तो हाँ अगर ऑनलाइन इस योजना बिच आवेदन करना है तां तुहानू दस दईए कि PMUY.gov.in वैबसाइट पर जाई के भी जड़ा सा तुहां अपना आवेदन जड़ा सा
3: करी
2: सकते, कने लाभ तो तुहानू दस दईए कि इस योजना का यही लाभ है कि सारे ते पहला कने सारे ते बड़ा लाभ के प्रदूषण घट होना जिससे कि हाड़े
3: जिहड़ी घट होनी,
2: हाँ सारे की सेहत जिहड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहनी। कने दूजा फायदा यह कि दिखा जी जालू जालू लकड़ी जल्दी है तालू तालू जड़ा सा पेड़ों का कटान सांझो जड़ा सा दिखने मिलता, घट लकड़ी जलगी तो पेड़ों का कटान भी घट होना, कने
3: साड़ा पर्यावरण सुरक्षित रहना,
2: पर्यावरण सुरक्षित रहना, कने हरियाली खुशहाली हांजो सारे बखे दिखने मिलनी, कने कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ जड़ा सा सांझो मिलने।
3: कने दूई गल है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वास्ते सांझो आवेदक जो पहचान पत्र कने आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए या फिर निम्न वर्ग का गरीबी कार्ड या कोई भी कार्ड और बैंक खाता संख्या नंबर कने पासपोर्ट साइज फोटो
2: जी, जी।
3: कने एक KYC दी जरूरत पड़ती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जेड़ा सा तो हां जानी लई होनी है, कने जेड़ा नी जुड़े इस योजना ने
3: सहयोग
2: कोशिश करन कने जुड़न, कने चुन्नी ताई फ्री ते समय होवा दा विराम दा कने सुनना हा एक सनेह, कने उसके बाद एक लोकगीत।
4: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: जी ता चुनिताई, इसी कन्नै कार्यक्रम दा समय इत्थों ही खत्म होआ करदा।
1: हाँ
0: दस्सी
1: जी
0: कि कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुत करता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। हुण सांझो दूनी जो दिया इजाजत। अच्छा
1: अच्छा जी,
0: जी,
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार। 7:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इसमें आज मधुमक्खी पालन के विषय में जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करदे सारे स्रोतियां दा एक बारी टियाले पर फेरी थे स्वागत
1: स्वागत।
0: करना है। एक बारी फेरी ते दस दईए कि अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कना मेरे साथ दे दे चुन्नी ताई। ता चुन्नी ताई एक बारी फेरी ते तुहांजो राम
1: राम
0: राम।
1: राम कन्ने सारे किसान कन्ने बागवान भाई हैं जो दो अस जोड़ी के फिरी दे राम राम
0: जी बिल्कुल। कने दिखा जी जियां कि खेतीबाड़ी दी कार्यक्रम दे अनुसार अगर अहां खेतीबाड़ी दी गल करिए तां चुन्नी ताई अहां दिखा दे ही हैं कि अजकल जिहड़ा साडे खेत हैं बिल्कुल हरे भरे हैं चारों तरफ बीड़ा पर भी घा जिहड़ा सा खूब जिहड़ा सा उगया है। कने भाई जिहड़ा जे साडे पशु पालक भाई बहन हैं तिन्हां दीआं तां मौजां हैं कहें कि दिखा जी हर बीड़ा पर जिहड़ा घा खूब है। कने डंगरां ज्यादा मजे लगे होने कने दुद्ध देही भी जिहड़ा सा अजकल भरमार होनी। कने मैं तां बोला था कि दुद्ध देही सौगी सौगी घ्यो भी खूब जिहड़ा सा जोड़ा दा होना खड़े साथियों का तां भाई जुड़ना भी चाहिए कहें कि मेहनत भी जिहड़ा
1: सही
0: सा
1: करदे न
0: सही करदे। कने इतनी मेहनत पशु पालन च है कने
1: चुनी ताई फल तो मिलना ही चाहिए
0: हाँ
1: ना।
0: कने घा सौगी सौगी फीडां भी बड़ी भारी महंगी हुई है
1: बीज
0: जी
1: महंगा फीड स्प्रे
0: खड़े भी
1: महंगी
0: महंगी हुई हो ना जी। तां डंगर बछू भी पालना जिहड़ा सा आसान
1: आसान
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: कने अहां तो हम जिहड़ा दुद्ध लैंदे ना खरीददे होर कोई लोग सारे खरीददे तां सब बोलदे भाई दुद्ध बड़ा भारी महंगा पर जालू जे
1: आपू पालदे हैं ना तालू
0: हाँ
1: पता लगता भी
0: तालू
1: क्या
0: पता
1: चीज
0: लगता
1: महंगी कन क्या
0: तां
1: सस्ती।
0: क्या सस्ती। कने तालू फिरी दिमागे च एक ही ख्याल आउंदा चुन्नी ताई के भाई ये तां फिरी सस्ता पवा दा सांझो है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जेड़ा खरीदिया सा सस्ता है कने वो
0: हाँ
1: महंगा पौंदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तां दिखा जी बड़ी भारी मेहनत होंदी कने हां
1: किसान
0: जो
1: भाई साढ़े डेयरी पालक भाई बड़ी
0: जी
1: मेहनत करदे
0: जी कने सांझो तिहा मेहनत दा जिहड़ा सा तिन्हां दा शुक्रिया अदा भी करना
1: करना
0: चाहिए दा
1: चाहिए
0: क्या कि सै मेहनत करा दे कने सांझो घर द्वार जिहड़ा सा
1: दुध
0: सारियां
1: पजा दे।
0: चीज़ां दै दे सै आई के है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ जी
0: तां ये सारी चीज़ जिहड़ा सा अहां टियाले दे माध्यम ने भी बार बार बोलते रहिंदे कि हर किसान जो हर साथी जो इतनी के कोशिश करना चाहिए कम से कम जिहड़ा खेतीबाड़ी करा दा किसान तिसी तो चाहिए कि एक गाय
1: पशु
0: या एक
1: पाले
0: मैं जिहड़ा सा जरूर
1: पाली
0: पालन
1: ले
0: ताकि तिनी खेतीबाड़ी करनी है तो भाई गौ
1: खाद
0: गौमूत्र
1: भी।

0: चाहिदा ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी, हाँ जी,
0: तां ये सारियां चीज़ें तां ही संभव है ना, अगर किसान साथी जेड़ा सा पटियां सोगी सोगी जेड़ा
1: पशु
0: सा,
1: पालन
0: हाँ पशु पालन का कार्य भी छोटा मोटा जेड़ा सा कर,
1: क्या कहा पत्रा तो दिनों मिली आना
0: जी
1: ना।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: तां ये सारियां चीज़ें एक ही रुख कर दिया कि भाई किसानी जेड़ा सा अहां बोली सकते कि आसान काम तां चलो नहीं है,
1: हाँ जी,
0: पर घाटे का काम भी
1: भी
0: जेड़ा
1: नहीं
0: सा
1: है।
0: नहीं
1: तो हाँ
0: है ना
1: देखा,
0: जी।
1: गाय एक बैंक होती है, जिन्हें गा पाली तिस वाल सब कुछ होता है,
0: जी।
1: जिया जमीन तिया गा।
0: हाँ बिल्कुल, कहना साहब बोलते ना कि दुध दही तो सांझो मिलता मिलता, कहना चुनीताई कई बारी आह बोलते ना भाई आज दाली खाने दिल नहीं करा था ना,
1: तो आज मदर ही हुई
0: ता
1: है।
0: हाँ ता आज कड़ी भी बनती है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ता ये सारी चीज़ें देखा जी बढ़िया अच्छी लगती हैं सुनने को, कहना बड़ा मज़ा आता जलू वहाँ इन चीज़ों
1: करते
0: प्रयोग भी कर देना अपने
1: जल हम
0: घर
1: गा
0: द्वारे,
1: पाल दे
0: हाँ
1: ना।
0: ना
1: हाँ जी,
0: जी।
1: हाँ जी,
0: ता देखा जी बड़ी अच्छी गल है, कहना ऐसा एक अपना बोल देना कि जमीना ने जुड़ाव जेड़ा
1: सब बड़ा जरूरी
0: सा
1: है।
0: जो जरूरी है कहना सांझो रखना भी चाहिए है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी, हाँ जी,
0: कहना इस दे सोगी सोगी जी यहाँ हड़े किसान साथी जरूरी नहीं है कि चुनिताई
1: गाय
0: खेती
1: पालना।
0: गाय पालने या जमीना ने जुड़े ही कम करन, ऐसे साथी भी है ना हड़े जिन्हें जमीना बड़ी बड़ी घट
1: घट
0: है
1: है
0: ना जी,
1: जमीना है नहीं।
0: जमीना है ना नहीं है बड़ी बड़ी घट है ना, तो तिन्हें अहाँ यही सलाह देंदे बार बार के तो हाँ खेती बाड़ी ने जुड़े हो ऐसे कमकार होर भी है ना जिन्हें तो हाँ कर सकते जिन्हें वास्ती तो जो जमीना की जरूरत भी नहीं होंगी,
1: निपुण है ने।
0: ज़्यादा पैसे दे लगाने की जरूरत भी नहीं होंगी,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कहना देखा जी अच्छा खासा मुनाफा
1: हाँ
0: जड़ा
1: भी
0: सा तो हाँ इन्ह
1: कमाई
0: कमां
1: सकल।
0: ते कमाई सकते। तो जी के इन्ह कमां की गल करिए तो सारे ते पहला सांझो उनका ख्याल चुनिताई मधुमक्खी पालन का,
1: बिल्कुल जी,
0: तां मधुमक्खी पालन दे बारे बिच ही जड़ा सा अज अहां जानकारी साझा करनी है, तो चुनिताई दसा तो हाँ क्या जानकारी ले के अज आयो इस बारे ते।
1: तरसीलू राम जी आज जड़ी जानकारी लेके आए सह मधुमक्खी पालन दे बारे च।
0: जी जी
1: आर्थिक लाभ वास्ते मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता, कन इन्हों का प्रबंधन जड़ा होंगे सही, जिसो ही मधुमक्खी पालन बोलते हैं।
0: जी जी
1: मधुमक्खियां ते असा जो शहद कने मोम दोनों मिलते हैं, कन इन्हों उत्पादों के अलावा परागकण च भी मधुमक्खियों का बड़ा योगदान होंगे।
0: जी जी
1: मधुमक्खी एक संघचारी कीट है, इसका मतलब यह है कि एक समूह च एक उपनिवेश या कलोनी बनाई के रहने रहते हैं, कन इन्हों ने जड़ा रहने का स्थान होंगे सह छत्ता होंगे, जिसको छत्ता बोलते हैं।
0: बिल्कुल, ता देखा जी छत्ता बनाई के रहनी है, पर जालू जे अहाँ इन्हें पाल दे ना
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ता तो पता ही है अहाँ जड़ा सा पेटियां बनाई के इन्हें रख दे
1: हाँ जी, हाँ
0: करें। देखा जी ये जड़ा मधुमक्खी होनी है ना जी परागण जी तो हाँ गल की परागण च बड़ी भारी मदद कर दी है ये मदद इसा ही
1: शायद
0: मदद
1: डांड च।
0: हाँ इसा ही तिदा ये होंगे कि हड़ियाँ फसलां जी के हड़ियाँ सब्जियां हो गई आना जी हड़े बागवानी जड़ा सा पेड़ पौधे ने तिना दा फुल जालू आंदा परागण च बड़ा मदद
1: मदद
0: करदी
1: करता।
0: है,
1: हाँ
0: कने
1: जी,
0: फसल जड़ा सा खूब होंदी खास करके अहां गल करिए तिलहनी फसलां दी जी के हड़ी सरसों है
1: हाँ जी,
0: आना जी, ता बड़ी बारी अच्छी पैदावार जड़ा सा तिस बीच ये अपनी भूमिका निभानी है,
1: निभांदी
0: कने
1: ने।
0: खूब शहद भी सोगी सोगी संजो देनी है, कने खूब संजो जड़ा सा फायदा होंदा
1: कन्नी
0: चुनिताई।
1: शायद तो नहीं पता है कितना अनमोल चीज है
0: जी जी
1: इसते
0: कने
1: मधु
0: उपरे ते फिरी शहद हो प्राकृतिक है ना
1: से, तो
0: जी।
1: और भी बढ़िया तीस कन
0: हाँ
1: दू गल। मोम ते मोमबत्तियां बनिया,
0: जी
1: पॉलिश बन दे, शेविंग क्रीम और कई उत्पाद बनाए जाते।
0: जी
1: कन्नी गल जरूर नोट करने वाली कि शहद की गुणवत्ता फुलां की किस्मों पर निर्भर करती।
0: हाँ
1: अगर
0: बिल्कुल,
1: फुलां की किस्म अच्छी होगी तो थोड़ा शहद खरा होना, कन्नी थोड़ी
0: हाँ जी हाँ जी
1: थोड़ा घट
0: बिल्कुल
1: होगा तो
0: बिल्कुल
1: इतना अच्छी क्वालिटी नहीं होनी तीस दिन
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तरह तरह का शायद कई बार जी हाँ सुनते हैं
1: लिख
0: कि
1: ये ओगरो है।
0: सफेदे का हो या फिर सरसों का हो या फिर अलग अलग तरह दे जेड़ा
1: गेंदे तो
0: हड़े
1: ही है।
0: हाँ जेड़ा हड़े मधुमक्खी पालक भाई है ना सह सब कुछ जान दे के कुछ प्रकार दे शहद का जेड़ा सह ज़्यादा मूल्य होंगे कना कुछ का घट, कना कई बार अहाँ दिखते चुनिताई के विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं जी कि मौसम खराब हो जाता ज़्यादा बर्खा हो
1: बर्खा
0: गई
1: होने तो फूल
0: आना जी,
1: खराब हो
0: फसल
1: जाते।
0: फसलां तबाह हो जानियां, ता जालू हाड़े थोड़े जड़ा मधुमक्खी पालक भाई है ना थोड़े दे
1: थोड़े
0: निराश
1: निराश हो जाते।
0: जरूर होंगे, कने
1: हाँ,
0: जालू की बरसात का मौसम लगता तो इस बरसात के मौसम बिच भी तिन्हें जेड़ा सा अपनी मधुमक्खियों की बड़ी देखभाल करने
1: देखभाल
0: की
1: करना
0: जरूरत होंगी,
1: पौने।
0: क्योंकि अहाँ सुने कि रंगड़ फिरी और किस्म के कीट जड़ा सा मकौड़ियाँ इन्हें लगी जाए काफ़ी
1: हाँ
0: नुकसान पहुँचादियाँ, तो बड़ी तिन्हें देखभाल करने की जरूरत होंगी, ता ही अहाँ बोलते कि किसान साथी जालू भी तो हाँ किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम करना है या किसी बारे से सोच देने तो हाँ तो जो प्रशिक्षण जरा
1: लेना
0: लेना
1: से बड़ा
0: बड़ा जरूरी
1: जरूरी।
0: होता
1: हाँ जी,
0: तिस्ते
1: हाँ
0: क्या
1: जी,
0: होता तो हाँ तो

0: बड़े कम्मे च होने वाली किसी भी प्रकार दी समस्याएं होनी है तिना ने तो हाँ अच्छी तरह जेड़ा सा निपटाई
1: निपटी
0: कर
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी, हाँ जी,
0: तां यही छोटी जी जानकारी जेड़ा सा अहाँ अपने साथियों ने साझा करा दे है कने अहाँ यही बोलना चाहेंगे कि अच्छा काम कर रहा है तो हाँ जानकारी लिया तो
1: कोई
0: हाँ
1: ज्यादा
0: शिक्षण
1: जमीन है नहीं,
0: लिया।
1: कोई खाद की जरूरत नहीं है,
0: जी, ऐसा कुछ जरूरत होती नहीं है। जरूरत
1: बस है
0: यही है
1: कि
0: कि तुम जो
1: बक्से
0: थोड़ा दिया प्रशिक्षण लेने की जरूरत
1: जरूरत
0: है
1: है। हाँ जी, हाँ
0: कहना
1: जी,
0: थोड़े देर पैसे लगाने की जरूरत होती, ज़्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत
1: जरूरत
0: नहीं
1: नहीं
0: होती कहना तो
1: पौंदी,
0: हाँ अपना अच्छा खासा व्यवसाय जेड़ा सा चुनीताई
1: कर सकते कने
0: शुरू कर
1: अपनी आर्थिकी
0: सकते।
1: जो भी सुदृढ़ कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी तो चुनीताई मिंजो लगा था कि पानी दे गिलासियों तो हाँ जेड़ा सा हथ पाई थे तो गला जेड़ा सा सुखी
1: सुखी
0: गया
1: है।
0: होना
1: हाँ जी, हाँ
0: तो
1: जी,
0: हाँ मजे ने पानी पिया कर मैं हाँ मजे ने सुन दे एक प्यारा दिया
1: लोकगीत।
0: जी।

0: जी चुनीताई, सुनिया अहाँ ये लोक गीत कने? आशा करते के सारे जड़े से पसंद आया होना,
1: बिल्कुल
0: है
1: जी,
0: ना जी?
1: बिल्कुल।
0: कने देखा जी, लोक गीत के बाद एक बारी फिरी ते चलना अहाँ अपने खेत खलिहाण, अपने गांव दी तरफ, है ना जी?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो गांव दी गल करिए तो हाँ, जियाँ कि बरसात का मौसम लग गया चुनीताई, बरसात के मौसम बिच हालांकि शहरी इलाकें च इतना ज़्यादा फर्क नहीं पाता, पर
1: बिल्कुल।
0: ग्राएं दी जिहड़ा वातावरण होंदा, पर्यावरण होंदा, थी थोड़ा जी अलग किस्म दा एक वातावरण होंदा ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी, हाँ जी,
0: तां ओथू क्या जी, गलियां गलियां भी होंदियां तुहाड़े घरां कन्नै, तुहाड़ियां
1: बॉडियां होनियां कदे।
0: घरां कन्नै बोड़ियां, चलो बोड़ियां भी होनियां, फिर घरां कन्नै घराना भी होनियां।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तां दिखा जी बड़ी फरी है सांजो जेड़ा सा, अहां देखिया
1: एहतियात।
0: होना कि हाँ एहतियात रखनी जरूरत होंदी, क्या कि हड़ियां गलियां सिनियां होनियां ना जी,
1: हाँ जी,
0: कोई फिरी पशु
1: म
0: भी तिथी रहिंदे, अहां भी आखे बखे आला दुआला रहिंदे, उपरे ते फिरी अजकल जेड़ा आवारा पशु हैं तिन्हां दा भी प्रकोप जेड़ा सा सांजो काफ़ी दिखने मिला, कहें कि सभी जेड़ा सा सुकिए सुकिए दौड़ते।
1: बिल्कुल।
0: तां अहां लगभग ज़्यादा ते ज़्यादा दिखते कि ग्राएं बिच थोड़ी साफ सफाई का प्रबंधन जेड़ा सा इस दौरान अहां नहीं करी
1: कर
0: पाते,
1: पाते हैं दूसरा
0: है ना जी?
1: बीमारियां फैलती, मच्छर
0: जी
1: मक्खी डेंगू
0: जी
1: वगैरह फैलने का खतरा होता।
0: हाँ सही गल, अहाँ गला दे के दिखा जी, थोड़ा साफ सफाई का प्रबंधन हाड़े गाँव वासी जेड़ा ऐसा
1: करना
0: ज़्यादा
1: चाहिए,
0: अजकल करना चाहिए, खास करी के जेड़ा तो हाँ पानी पींदे ने तिस दा प्रबंधन तो जो ठीक ठाक करना
1: करना
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: चाहे तो हाँ बोड़ी का लिया दे, बाएँ का लिया दे, या छरूड़े का लिया दे, कुथी दे भी लिया दे, तो जो कोशिश करना चाहिए कि अजकल जेड़ा सा पानी उबाली
1: बाली के
0: के
1: पीन।
0: पीण, है ना
1: हाँ
0: जी?
1: जी,
0: ऐसा नहीं है कि उबाली के गर्म गर्मी पींदे रहे तो सा,
1: तुम
0: है ना
1: सवेरे
0: जी?
1: वाला संजा पिया, संजा
0: हाँ
1: वाला संजू पे सवेरे पिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ते क्या होंगे कि ऐसा बोलते हैं ना, बरसाती का पानी थोड़ा कच्चा पानी भी होंगे, है ना
1: हाँ
0: जी?
1: जी, हाँ जी,
0: तो सांझो नहीं पता कि जेड़ा हड़े छरूड़ू में पानी हो कि क्या पता सा कुल्ला का पानी तो नहीं तीस कन्ना
1: मिलाया।
0: मिला दा होना,
1: हाँ
0: है ना
1: हाँ
0: जी? या फिर पता नहीं तिथि पवा दा उपर, पता नहीं द्रबड़ू में क्या पिया कहना सा कुड़ी।

0: जी तो इसी लोक गीत कन्नै कार्यक्रम का समय इतों ही खत्म हो रहा। हाँ दस दईए कि अज कार्यक्रम तकनीकी सहयोग सुरेंद्र कपूर और कने प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर
1: जितेंद्र पाल सिंह
0: कने हुण टियाले दे सदस्य रसीलू राम
1: कने चुन्नी ताई जो दे अनुमति। अच्छा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
4: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
3: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
4: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।
5: हाँ!

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। देश व प्रदेश में श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू और हिमाचल के बीच समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार डिजिटल माध्यमों को दे रही है बढ़ावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, असंवैधानिक कानून बनाकर हाईकोर्ट में फजीहत करवा रही है सुक्खू सरकार। और कुल्लू के भेखली क्षेत्र में ब्रेक फेल होते ही ढांक से टकराई एचआरटीसी की बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के पवित्र प्रेम व अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और मदद का वचन दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों व विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों को भी बांधा जाता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करे और खुशहाली और समृद्धि लाए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने इस अवसर पर कामना की कि ये पावन पर्व सभी के जीवन को आलोकित करें। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने शिमला स्थित आरट्रैक के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित व दीर्घायु जीवन की कामना की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डीजी

0: ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोर्चा की बहनों ने सैनिक भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर यह संदेश दिया है कि पूरा समाज व देश अपने वीर जवानों के साथ मजबूती से खड़ा है। उधर लाहौल स्पीति के जिस्पा स्थित बीआरओ के जवानों और दारचा पुलिस चौकी में तैनात प्रदेश पुलिस के जवानों की कलाई पर भी भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने राखी बांधी। उन्होंने कहा कि दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सेवा व सुरक्षा के लिए समर्पित जवानों की कलाई पर राखी बांधना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और सेवाभाव को नमन किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के बीच एक समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की अपार संभावनाओं पर बल दिया है। वे आज जम्मू स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि दोनों क्षेत्रों में मंदिरों, धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की समृद्ध विरासत मौजूद है। इन पवित्र स्थलों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा और समन्वित प्रचार प्रसार से श्रद्धालुओं को अधिक समृद्ध तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सकता है। साथ ही जम्मू और हिमाचल प्रदेश की साझा आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत को भी देश दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने और जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मंडी में जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से विभिन्न नई व उन्नयन योजनाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी शहर में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सितंबर माह में हिम जलदूत मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप नगर निगम मंडी के 13 वार्डों के करीब 10,900 उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ रुपए से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
2: अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच?
1: यहीं अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
2: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
1: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
2: मैं आज ही जाती हूँ।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े कानून को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार असंवैधानिक कानून बनाकर बार बार हाईकोर्ट में अपनी फजीहत करवा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि खुद को कानून का जानकार बताने वाले मुख्यमंत्री को विपक्ष ने बार बार आगाह किया है और सरकार के कानून संवैधानिक कसौटी पर सही नहीं उतर रहे हैं। इस बीच जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटरों को जूस पिलाकर आज उनका अनशन समाप्त करवाया। टैक्सी ऑपरेटर अपनी टैक्सियों की परमिट अवधि 12 से 15 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा टैक्सी ऑपरेटरों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ऑपरेटरों की मांगों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के समक्ष उठाने का भरोसा दिया ताकि उन्हें राहत मिल सके।
4: आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मैंने इनसे भी आग्रह किया, हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप अपने अपने परिवार वालों के साथ घर में जाकर के मनाएं, और मैंने उस आग्रह को जब इनके सामने रखा इन्होंने सहज रूप से उस आग्रह को स्वीकार किया और आज जो है वो जो अनशन पिछले 5 दिन से चला था आज वो समाप्त हुआ। प्रदेश सरकार के समक्ष हमने पिछले कल भी बात कही थी और उसके साथ साथ भी हम जाकर के अभी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, हम इस मामले को पूरा केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे ताकि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सभी साथी हैं उनको राहत मिल सके।
0: कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते भेखली क्षेत्र में ब्यास

0: मनोरंजन नहीं बल्कि नाहन शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का भी हिस्सा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रक्षाबंधन के पर्व पर पूरा आसमान पतंगों से भरा नजर आता था और हर आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। उनका कहना है कि बदलते समय के साथ अब ये परंपरा दम तोड़ती नजर आ रही है।
1: रक्षाबंधन में पहले नाहन में पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती थी। सुबह सुबह रक्षाबंधन जब हो जाता था तो भाई सबसे पहले छतों पे चढ़ के पतंगे पकड़ के और पतंगे उड़ाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेंड जा चुका है, क्योंकि इसमें जो हमारा ड्रॉबैक हो गया वो एक तो मोबाइल है। बच्चे आजकल सब 24 घंटे मोबाइल पे होते हैं और जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो बाहर निकल चुके हैं, तो ये पतंगों का जो है ये लगभग खत्म ही हो चुका है। इक्का दुक्का पतंग देखने को मिलती।
0: प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। पिछले एक सप्ताह से मॉनसून के कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश का क्रम धीमा हुआ है, जिसके तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त की शाम से प्रदेश में फिर से मॉनसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त से 3 सितंबर तक मॉनसून की सक्रियता से मैदानी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश व प्रदेश में श्रद्धा पूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र पर्व का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू और हिमाचल के बीच समेकित आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर दिया बल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार डिजिटल माध्यमों को दे रही है बढ़ावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, असंवैधानिक कानून बनाकर हाईकोर्ट में फजीहत करवा रही है सुक्खू सरकार। और कुल्लू के भेखली क्षेत्र में ब्रेक फेल होते ही ढांक से टकराई एचआरटीसी की बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
3: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, पेश है रोजगार समाचार। रोजगार समाचार के साथ मैं तृप्ता शर्मा। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, धर्मपुर के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 पद, सहायिकाओं के 11 पद भरे जाने हैं। साक्षात्कार दिनांक 17 सितंबर 2026 यानी वीरवार को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर में प्रातः 10:30 आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पोषक केंद्र फीडर एरिया की सामान्य निवासी होनी चाहिए। इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में 11 सितंबर 2026 तक जमा करवाए जाने जा सकते हैं। केंद्रों की सूची इस प्रकार से है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बाजार गढ़खल, थड़ेका, ठाकुर द्वारा, ठिम्बर, कोटी, ओढ़ा, मध्याना, मंगोटी मोड़, सेक्टर 2, नगर परिषद परमाणु, टकसाल, सिहारड़ी चमारा, चामिया, घड़सी कुकाणा, नेरी, निचला बड़हो और घड़सी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर सुनिश्चित हेतु आवश्यक शर्त इस प्रकार से हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10-2 या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदन से 35 वर्ष के मध्य होने चाहिए। आयु निर्धारण हेतु अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026

बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को है और विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम सबरस के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ।

0: कार्यक्रम सबरस की पहली प्रस्तुति आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
0: आइए सुनते हैं एक विशेष सूचना। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 30 अगस्त सन 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा खेल के दौरान होने वाली चोटें और उपचार से संबंधित। अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर साहिल कुमार अस्थि रोग विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 30 अगस्त सन 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। फोन नंबर श्रोताओं एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 30 अगस्त सन 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस में फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बडाली ब्रदर्स की आवाज़ों में ये प्रस्तुति।

फकीरों के मानने वाला। लोग कहते हैं शाम को चिराग जगाते हैं, वो कहता बुझा देता हूं मैं। उनका चिराग कौन सा है जगने वाला? तो बोल कैसा आया?

अभी आपने सुना बडाली ब्रदर्स की आवाज में इस प्रस्तुति को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में गाया ये देशभक्ति गीत, देशभक्ति गीत। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देशगान FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है और पहली समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
3: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
4: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
3: We have given them range of support offers.
1: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
5: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी

0: और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
6: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
7: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 1800

0: जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
3: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब पेश है गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम के आरंभ
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, हमारी आज की फिल्म रहेगी मस्ती। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मस्ती के कुछ चुनिंदा गीत और बातें होंगी फिल्म के बारे में।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें आज आप सुन रहे हैं मस्ती फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। मस्ती फिल्म श्रोताओं सन 2000 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित है और इसमें अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया डिसूजा ने अभिनय किया है। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही। इस फिल्म की दो अगली कड़ी भी बनी हुई हैं, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, एक 2013 में बनी और एक 2016 में बनी। संक्षेप में अगर इस फिल्म की बात करें तो मस्ती तीन कुमारे लोगों, मीत यानी विवेक ओबेरॉय, प्रेम यानी आफताब शिवदासानी और अमर यानी रितेश देशमुख के इर्द गिर्द घूमती है। उनका जीवन तब तक लापरवाह रहता है जब तक कि उनमें से प्रत्येक की शादी नहीं हो जाती। अब वे कटु एवं असंतुष्ट पति नहीं बन चुके हैं। मीत की शादी आंचल यानी अमृता राव से होती है जो अपने पति को लेकर जुनूनी है और ऐसे ही उन दोनों की भी शादी होती है। तो चलिए बाकी की कहानी हम इस गीत के बाद आपसे साझा करते हैं।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से, और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मस्ती फिल्म के कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। इस फिल्म के अगर संगीत की बात करें तो वो दिया आनंद राज आनंद ने, और गीत लिखे इस फिल्म के सभी गीत लिखे हैं समीर ने, और आवाज़ें दी हैं अशोक मस्ती ने, आनंद राज आनंद ने, स्नेहा पंत ने, शान उदित नारायण ने, और गायत्री अय्यर मेघना ओबराय ने। मुख्य कलाकारों की अगर हम इसके बात करें तो अजय देवगन, इंस्पेक्टर सिकंदर

का रोल निभा रहे हैं विवेक ओबराय, मीत मेहता के रोल में आफताब शिवदासानी, प्रेम के रोल में रितेश देशमुख, अमर के रोल में अमृता राव, आंचल के रोल में इन्होंने प्रमुख भूमिकाएं जो हैं मस्ती फिल्म में निभाई। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इसमें आज आपने सुने मस्ती फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 MHz पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कारवां सुरों का। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं होगी प्यार की जीत फिल्म का यह गीत जसपिंदर नरूला की आवाज़ में।

अभी आपने सुना जसपिंदर नरूला व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत। फिल्म का नाम था होगी प्यार की जीत। कारवां सुरों का ये कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक के युगल सुरों में दागदा फायर फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना दाग द फायर फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक व साथियों ने। शब्द रचना समीर की थी और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। कारवां सुरों का इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कर्ण अर्जुन फिल्म से यह गीत।

अभी आपने सुना अलका याग्निक, ईला अरुण व साथियों की आवाज़ों में गाया कर्ण अर्जुन फिल्म का यह गीत। शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। कारवां सुरों का ये कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किक फिल्म से यह गीत।

अभी आपने सुना जैस्मिन सैंडर्स और योयो हनी सिंह की आवाज़ों को फिल्म किक में। इस गीत के बोल व संगीत दिया था योयो हनी सिंह ने। कारवा सुरों का ये कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्रों से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म नाम से।

चोरों की बारात इस फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का कारवा सुरों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड वीट्स। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं निकिता गांधी शशि, डीजे खुशी के मिले जुले स्वरों में लक्ष्मी द बॉम्ब फिल्म का यह गीत।

अभी आपने सुना ये गीत लक्ष्मी द बॉम फिल्म से। गीतकार थे गगन आहूजा, संगीतकार शशि व डीजे खुशी। बॉलीवुड वीट्स कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बाटला हाउस फिल्म से यह गीत, नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार भी प्राग के मिले जुले स्वरों में।

अभी आपने सुना बाटला हाउस फिल्म से यह गीत। इस गीत के गीतकार और संगीतकार थे तनिष्क बागची। बॉलीवुड वीर्स कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भारत फिल्म से।

अभी आपने सुना भारत फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था नीति मोहन, आकाशा सिंह, कमाल खान के मिले जुले स्वरों में इस गीत को आपने सुना। इस गीत के गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम बॉलीवुड वीर से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हम तुम और शवाना फिल्म का ये गीत।

हम तुम और शवाना इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम बॉलीवुड वीट्स इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना भेजा फ्राई टू फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था श्री डी और इश्क वेक्टर ने। कार्यक्रम की

करण और बादशाह के युगल स्वरों को अभी आपने सुना बीरेदी वेडिंग फिल्म में। बॉलीवुड वीट्स कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं तुम्हारी सुलू फिल्म का ये गीत।

दिव्या कुमार की आवाज में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का बॉलीवुड वीट्स कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड वीट्स FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अपना देश फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर किशोर कुमार के युगल स्वरों में अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं धर्मात्मा फिल्म से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर महेंद्र कपूर आनंद बख्शी के मिले जुले स्वरों में।

अभी आपने सुना धर्मात्मा फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आनंद बख्शी ने। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से यह गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, शब्द रचना अनजान की और संगीत या कल्याण जी, आनंद जी ने।

0: अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से यह गीत। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लूटमार फिल्म का ये गीत।

इस गीत के बोल लिखे थे अमित कुमार ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था लूटमार। और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

किशोर कुमार की आवाज में गाए खुद्दार फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय जो है वो अब संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग

0: अब भी लापता है। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1